अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: इसी के साथ रामचरितमानस का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 6:55 होने को है, आपसे थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे। सबसे पहले संस्कृत, फिर हिंदी और फिर अंग्रेजी में।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय UPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन्

समंदर के पास आ गए हैं, आबे हयात पीने, वो इश्क के अमी है, वो मर्द जन हसी है। शब में है खुशगवारी, दामान हुस्न कुदरत फैला हुआ है हर सू, और चार संत नगमे उम्मीद के हैं गूंजे। माहे तमाम उभरा है तेरी उल्फतों का, तेरी अदा की खुशबू रूह में समा रही है, और रूह हौले हौले अब्दी मसरतों के गहरे समंदरों की तह में उतर रही है।

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Catch the rain, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
4: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। पंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री

0: बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं।

0: संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और जीविका मिशन के तहत पहली जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तरकश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया। उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज। दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम। दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
6: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevents the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Task Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia Security Dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cybersecurity, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
5: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called

0: Inc. 14 packs, headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes, "The end of football superpower dump." The paper elaborates, "World football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete, and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show." And finally, Ernest Hemingway's novel, The Sun Also Rises on Bull Run's Turn 100. Well, The Indian Express writes that Nobel laureates' work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निमटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाबतगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमेरिका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। और फुटबॉल में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलाक्वामी कानून के मुताबिक इस खतरे से निमटने के लिए फैसलाकुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में तआवुन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। तआवुन में दहशतगर्दी के लिए रुकूम मुहैया किए जाने और काले धन को जायज बनाने की रोकथाम को मुस्तहकम बनाने, दहशतगर्दाना सरगर्मियों को माली मदद पहुंचाने की रोकथाम, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों इस्तेमाल और लोगों को ऑनलाइन बुनियाद परस्त बनाए जाने से निमटने, नीज डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए दहशतगर्दों की भर्ती रोकने के इकदाम शामिल हैं। दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने वाले रवैये का जिक्र करते हुए दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स को रोकने और दो तरफा व कसीर मुल्की तआवुन में इजाफा करने का आज़्म किया, जिसमें अक़्वामे मुत्तहिदा और माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF की सरगर्मियां भी शामिल हैं। दहशतगर्दी और बैन मुल्की मुनज्जम जराइम के दरमियान ताल्लुक का एतराफ़ करते हुए भारत और इंडोनेशिया ने अपने घरेलू कवानीन और बैन अलाक़्वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक एक दूसरे को मालूमात फराहम करने और बेहतरीन तौर तरीकों से आगाह करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने दहशतगर्दी के तआवुन से निमटने के लिए एक मुफाहमत नामे को जल्द मुकम्मल किए जाने का भी खैर मकदम किया। उम्मीद है कि इस पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे।

0: के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय वजीर आजम हैं जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। जकार्ता में इंडोनेशिया के कानून साज अरकान से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐसे दोतरफा ताल्लुकात में एक नए दौर के लिए कहा जो मुश्तरका तहजीबी विरासत, जमहूरी अकदार और मुस्तकबिल के मुश्तरका खाके पर मुश्तमिल हो। भारत को जमहूरियत की मां करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ जमहूरी राब्तों को मुस्तहकम बनाने का अहद किए हुए है।
2: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
1: भारत के तरक्याती सफर और विकसित भारत 2047 के तसव्वुर नीज गोल्डन इंडोनेशिया 2045 के दरमियान हम आहंगी को उजागर करते हुए वजीर आजम मोदी ने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में मजीद गहरी शराकतदारी के लिए कहा।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिया में शिरकत की। खसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखा तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
2: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ 3री सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद مستحکم بنا رہے ہیں۔ میلبرن سے

0: सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने मुख्तलिफ शोबों पर एलनिनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखीर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदामात किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरतेहाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरतेहाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवस्सुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में 3 तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमरीका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमरीकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताज़ा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख की इजाज़त दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मनसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और ज़रूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 गोल से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एन्जो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और 4 गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरा

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे गजानन राव जोशी द्वारा राग देशकर में गायन का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम साइंस मैगजीन।

0: Stay curious and stay inspired. This broadcast came to you from Indraprastha channel of Akashvani Delhi.
1: अभी आप सुन रहे थे साइंस मैगजीन. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. श्रोता, हम आपको याद दिला दें कि प्रातः 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश. इसमें आज आपके साथ रहेंगी अर्चना सचदेवा, तो सुनना ना भूलेगा ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और जुड़िएगा इस कार्यक्रम में अपने संदेशों के जरिए. फिलहाल 9:30 होने को है, वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है

0: उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार पूरी योजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव भी बरामद हुआ है और उसकी पहचान की जा रही है। केरलम सरकार ने वायडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीमें अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिले में येलो अलर्ट जारी है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि बंदर अब्बास, केशम और में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex, where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. They

0: เงิน
1: घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला और
2: मैं हूँ रश्मि कुकरेती।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 386.1 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
2: तो मंजुला, शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत ख्याल से। शिक्षा ने महिलाओं को सिर्फ डिग्री या नौकरी ही नहीं दी है, बल्कि सबसे बड़ा उपहार दिया है, वो क्या है?
1: आजादी।
2: नजरिया। वो नजरिया जो पूछना सिखाता है, क्या ये सही है, क्या मैं यही चाहती हूँ, और मैं तो कहूंगी ये ही है असली आजादी, है ना?
1: जी हाँ। तो आजादी दीजिए थोड़ी देर के लिए अपनी सभी परेशानियों, जिम्मेदारियों को, और अब याद कीजिए बस अपने खुशियों से भरे सपनों को, अपने बचपन को। तो आज का सवाल है, बारिश के मौसम में कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? बारिश में भींगना, कुछ गुनगुनाना, या फिर कुछ? और अपने जवाब हमें लिखकर भेजिए इस ईमेल आईडी पर fmgoldg@gmail.com।
2: तो बने रहिए हमारे साथ, जहां हर पल मिलेगा मनोरंजन, नई जानकारी और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली ढेर सारी बातें।
1: बिल्कुल।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मेरा साया से। और दोस्तों, जब भी मौसम विभाग बारिश, तूफान या गर्मी की सटीक जानकारी देता है तो हम अक्सर सिर्फ मौसम का हाल सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में मौसम विज्ञान को इतना भरोसेमंद बनाने के पीछे किन लोगों का योगदान रहा? तो आज बात करते हैं भारत की वेदर वुमन अन्ना मणि की।
1: वाह, तो मुझे लगता है तुम जो बताने जा रहे हो अन्ना मणि के बारे में, वो बहुत हम सुनेंगे। और जैसा कि तुम क्या बता रही थी, हम आ रहे थे स्टूडियो में, कि वो बचपन से ही किताबों की दीवानी थी, है ना। और आठवें जन्मदिन पर पता है उन्होंने क्या चीज मांगी?
0: क्या?
1: एनसाइक्लोपीडिया।
0: क्या बात है। हाँ। तो यही जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें भारत की महान वैज्ञानिकों में शामिल कर गई।
1: और उनको नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के साथ उन्होंने शोध किया और बाद में मौसम विज्ञान विभाग में जुड़कर मौसम मापने वाले उपकरणों के विकास में क्रांतिकारी योगदान उन्होंने दिया।
0: और उस दौर में भारत मौसम संबंधी उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था, लेकिन अन्ना मणि ने स्वदेशी उपकरण विकसित कर इस निर्भरता को काफी हद तक समाप्त किया।
1: और सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण शोध किए। उनके काम ने न केवल मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाया, बल्कि भारत में सौर और पवन ऊर्जा के विकास की भी मजबूत नींव रखी।
0: बिल्कुल। और लेकिन अन्ना मणि की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी उपलब्धियां नहीं थी दोस्तों। उन्होंने एक बार कहा था कि हम अवसरों का इंतजार नहीं करते, हम उन्हें अपने काम से बनाते हैं। और ऐसे समय में जब विज्ञान की दुनिया में महिलाओं की मौजूदगी बहुत कम थी, अन्ना मणि ने अपनी प्रतिभा और मेहनत से साबित कर दिया कि सपनों की कोई लैंगिक सीमा नहीं होती।
1: बिल्कुल। तो मंजुला, अगली बार जब आप मौसम की सटीक जानकारी के लिए अपने मोबाइल या रेडियो तक पहुंचे, तो उस सफर में अन्ना मणि जैसे वैज्ञानिकों के योगदान को जरूर याद करिएगा।
0: बिल्कुल याद करूंगी।

0: और अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत जिसको गाया था सुलक्षणा पंडित ने और अनवर ने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से।
1: और मंजुला, अभी जब तुमने ये वेदर वमन नमणि जी की बात की और साथ में गीत लगाया, बड़ा सुंदर गीत चुना तुमने सुलक्षणा जी का गाया हुआ। सच में इतनी खूबसूरत अभिनेत्री और देखिए कितनी विलक्षण प्रतिभा, वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी। कितनी सुंदर मीठी उनकी आवाज, एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े घर से आती है। जतिन ललित उनके भाई प्रमुख संगीतकार रहे हैं और पंडित जसराज उनके चाचा जी हैं। और ये मधुर गीत बता रहा था कि ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं जब महिलाओं में होती हैं तो वो अलग से ही चमकती हैं, है ना?
0: बिल्कुल सही। और देखिए, जब हमने बात की कि मेल के बारे में कि क्या विषय है, तो इसके बारे में हमारे पास जवाब भी आने लगे। हनी रे ये लिखती है कि आई लाइक टू सिट नियर विंडो, यानी खिड़की के पास बैठना पसंद करती है, वहां पे एक कप चाय या फिर नॉवेल पढ़ना पसंद करती हैं। और मैं कहूँ कि मेरा भी कुछ ऐसे ही शौक है तो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे में गाना सुनना।
1: हाँ, और एक और मेल आई हुई है चौधरीबाज जिला हिसार से, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी, वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में मैं इधर से उधर पेड़ों के नीचे से गुठली उठाकर कहीं पर जगह दिखे तो लगा देता हूँ। भाई वाह, सबसे बड़ी दौलत यही है कि पेड़ पौधे बुरे से बुरे आदमी को भी छांव देते हैं। और एफएम गोल्ड की तारीफ करना मेरे बस की बात नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सबसे पहले मैंने ही ईमेल भेजनी शुरू की थी। भाई वाह, क्या बात है। इनकी जो कोशिश है वो काबिले तारीफ है मंजुला। हम पर्यावरण के प्रति सतर्क रहें और बारिश तो क्योंकि समय वन महोत्सव भी चल रहा है ना, और ये समय है कि आप नए नए पौधे लगाएं, नए नए एफर्ट्स भी करें, है ना?
0: बिल्कुल। और अंशु माला जी ने लिखा है कि बारिश की बूंदे जब मेरी हरी भरी बालकनी पे पड़ती है तब गिली मिट्टी की एक नॉस्टैल्जिक महक हवा में घुल जाती है। उस टाइम दिल बस एक ही मेमोरी में बार बार लौट आता है।
1: क्या बात है, मुझे भी बारिश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मंजुला बहुत पसंद है।
0: और अब अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि बेटियों को भी कुछ चीजें सिखानी चाहिए, जैसे कि नो का मतलब नो होता है और बाउंड्रीज उन्हें जरूर बताएं। उन्हें सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, उन्हें जिंदगी जीने की सही समझ और अपने लिए खड़े होने का साहस भी सिखाना बहुत जरूरी है। बचपन से ही उन्हें बताइए कि ना एक पूरा वाक्य होता है। अगर किसी बात पे इंसान या किसी परिस्थिति में उन्हें सहज महसूस नहीं हो रहा है तो उनका ना ही काफी है। उन्हें किसी को सफाई देने या वजह बताने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी, उन्हें मुखर बनाइए, उन्हें अपनी बाउंड्री सीमाएं तय करना सिखाइए। हर किसी को अपनी निजी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। अपनी भावनाएं, अपनी बातें और अपनी परेशानियां भाई हर किसी के साथ साझा करना भी समझदारी नहीं होती मंजुला।
0: बिल्कुल। और आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बेटियों को ये भी समझाइए कि वहां जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सुरक्षित नहीं होता। अपनी निजी

0: तस्वीरें, लोकेशन, रोजमर्रा की गतिविधियां या हर छोटी बड़ी बात सार्वजनिक करने से बचें। इंटरनेट पर एक बार गई जानकारी हमेशा के लिए रह सकती है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजुला। मैं तो ये कहूंगी कि कभी भी किसी पार्टी या समारोह पर या किसी जगह पर हो तो उन्हें एक पल के लिए भी ये लगे कि माहौल ठीक नहीं है या लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं या वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, तो भाई उनको बिना किसी झिझक के वहां से निकल जाना चाहिए। यही सही फैसला है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा मान जाए, या उनको देखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा किसमें है ना।
0: और उन्हें यह भी सिखाइए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। भरोसेमंद लोगों के फोन नंबर याद रहें, आपातकालीन सेवाओं की जानकारी रखें और अपने मन की आवाज पर भरोसा करना सीखें।
1: भाई आत्मरक्षा सिर्फ हाथों की ताकत थोड़ी होती है, सही समय पर सही फैसला लीजिए। अगर ये समझ है तो मैं तो कहूंगी ये सबसे बड़ी सुरक्षा है ना मंजुला।
0: बिल्कुल। तो आइए अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छे अंक और अच्छी नौकरी ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्ट सीमाएं और सुरक्षित जीवन जीने के कौशल भी दें, क्योंकि सशक्त बेटी ही सुरक्षित बेटी होती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म आंगन की कली से, और बारिश की फुहारे, मिट्टी की खुशबू और चाय की चुस्कियां, मॉनसून का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बताइए, क्या इस मौसम में आपके बाल भी ज्यादा टूटते हैं या स्किन अचानक ऑयली और डल हो जाती है? अगर जवाब हाँ है तो आज की छोटी सी बात, छोटे मोटे जो टिप्स हैं, आपके बहुत काम आने वाली है।
1: और शुरुआत मैं करने वाली हूँ वो टिप्स का। भाई, सबसे पहले बालों की देखभाल की बात करते हैं। कोशिश कीजिए कि बारिश के पानी से बालों को बचा कर रखें, है ना। अगर बाल भीग जाएं तो घर पहुंचकर उन्हें साफ पानी से धो दें और अच्छी तरह सुखाने के बाद ही बांधें।
0: बिल्कुल, और एक आसान सा DIY हेयर सीरम भी आजमाइए।
1: मुझे बताओ, ये मैं सुनना चाहती हूँ बहुत अच्छे से।
0: एक स्प्रे बॉटल में पानी भरें और उसमें 2-3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और 2-3 बूंद टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिलाइए। हर हेयर वॉश के बाद इसे बालों की लंबाई पर हल्का सा स्प्रे करें। इससे बाल फ्रेश, मैनेजेबल और स्कैल्प भी तरोताजा महसूस होगी।
1: और जब मंजुला तुमने बालों की बात की तो चेहरे को हम कैसे छोड़ सकते हैं ना?
0: तो चलिए अब मैं सुनती हूँ ध्यान से, क्या बताने वाली हैं।
1: भाई, हर रात चेहरा साफ करने के लिए कॉटन की मदद से राइस वाटर लगाइए अपने चेहरे पर। हाँ, और इसे रात भर रहने दो, ये आपकी जो त्वचा है उसको बिल्कुल प्राकृतिक ग्लो देगा और उसे हाइड्रेट रखने में भी मदद करेगा।
0: बिल्कुल, और हाँ, खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं आती, भरपूर पानी पीजिए, प्रोटीन और मौसमी फलों को अपने प्लेट में जरूर जगह दीजिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसका नूर चेहरे और बालों पर अपने आप दिखाई देता है।
1: क्या बात है, जुल्फों पर बात हो रही है। मुझे लगता है तुम्हारा गाना भी जरूर जुल्फों से जुड़ा हुआ होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो एक छोटी सी कविता मैं सुना दूं?
0: बिल्कुल, इंतजार कर रही हूँ, कब सुनाने जा रही हैं।
1: बारिश का मौसम है तो मुस्कुराना भी जरूरी है, खुद का ख्याल रखना और हर बहाना भी जरूरी है।
0: बाल हो या चेहरा, प्यार थोड़ा खुद से कीजिए, क्योंकि हर मौसम में आपका खिलखिलाना भी जरूरी है, चाहे चेहरा हो या बाल।

0: अभी हम सुन रहे थे येसुदास और लता मंगेशकर को फिल्म त्रिशूल से, और मुझे लग रहा है कि रश्मि जी मेल्स चेक कर रही हैं।
1: जी बिल्कुल, मेल्स की तो बारिश हो गई है यहाँ जबरदस्त। हाँ, और तो उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं कि भाई मैडम जी हमें तो बारिश में चाय पकौड़े खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। देखो चाय पकौड़े किसको नहीं अच्छे लगते ना बारिश में।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, आप दोनों बेटियों को राम राम, और आज का जो सवाल है बहुत ही बढ़िया पूछा, मौसम के हिसाब से अब तो खैर उम्र चली गई लेकिन बचपन में बारिश का इंतजार करते थे, घंटों घंटों नहाते थे, तबीयत खराब हो जाए या हमारे खाने के लिए चिली बना देती थी, खुश रहते थे, अच्छा लगता था।
1: और कामायनी लक्ष्मी नगर से कह रही हैं कि मुझे तो बस बारिश की बूंदों को गिरते देखना बहुत पसंद है, जब हरे हरे पौधों और पत्तियों पर फूलों पर गिरती है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
0: और सुदर्शन मुखी जी लिखते हैं कि बचपन और बारिश दोनों का चोली दामन का साथ है, बचपन में कागज की कश्ती चलाना, गलियों में दौड़ लगाना, हमारे बच्चों के जो मीठी यादें हैं बचपन की वो अभी भी याद आती है।
1: और अनिल जी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं मुझे बारिश में भीगना और रोस्टेड कॉर्न खाना पसंद है। भाई मुझे भी बहुत पसंद है अनिल जी।
0: बिल्कुल, तो एक बार फिर से सवाल भी बता दें और ईमेल आईडी भी। हमारा आज का सवाल है कि मानसून में बारिश में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। तो चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। किटी पार्टी नाम तो सुना होगा
1: भाई, यहाँ बारिश और वहाँ किटी पार्टी, भाई क्या कॉम्बिनेशन है गजब।
0: तो नाम सुनते ही हंसी ठिठोली गपशप और ढेर सारी मस्ती याद आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार वही म्यूजिकल चेयर, वही ड्रेस कोड, वही पुराने गेम्स, तो कहीं ना कहीं इस खूबसूरत मिलन को थोड़ा सा दोहराव वाला तो नहीं बना देते
1: भाई। म्यूजिकल चेयर और वही ड्रेस कोड, पुराने गेम, कहना क्या चाहती हो मंजुला?
0: तो मैं इस बार चाहती हूँ क्यों ना अपनी किटी पार्टी में एक फ्रेश बदलाव लेकर आया जाए। सबसे पहले ड्रेस कोड का दबाव छोड़िए, हर व्यक्ति अपने पसंदीदा कपड़ों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सहज महसूस करता है। जब सभी कंफर्टेबल होंगे तब उनकी मुस्कान भी सच्ची होगी और बातचीत भी दिल से निकलेगी। फैशन से ज्यादा जरूरी है आपका अपनापन।
1: और अब मैं कुछ गेम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि गेस द पर्सनैलिटी जैसा एक गेम हो, या इमोजी क्विज हो, या पिक्चर पजल हो, या फिर मेमोरी चैलेंज हो, पर मुश्किल से गेम्स हैं लेकिन आप कर सकते हैं ट्राई। और उसके बाद टीम बनाकर छोटे छोटे दिमाग लगाने वाले खेल खेले जाएं, क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि जो हमारे सोचने की क्षमता है, टीम वर्क को और बातचीत को भी बढ़ाते हैं। और अगर चाहे तो एक छोटा सा टैलेंट कॉर्नर भी रख सकते हैं ना, कोई कविता सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई ट्रैवल स्टोरी साझा करे, और कोई आसान सी रेसिपी भी बताए, या फिर कोई लाइफ हैक शेयर करे। यकीन मानिए हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है।
0: और एक और खूबसूरत आइडिया है नॉलेज एक्सचेंज। हर सदस्य 5 मिनट में कोई नई जानकारी, किताब, हेल्थ टिप या निवेश की छोटी सी सीख या किसी नए स्किल के बारे में बताए। सोचिए एक किटी पार्टी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मंच भी बन सकता है।
1: और एक सबसे जरूरी बात मैं मंजुला कहना चाहती हूँ, भाई तुलना नहीं होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए ना, आलोचना भी नहीं होनी चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए जहाँ हर सदस्य खुद को महत्वपूर्ण महसूस करे। क्योंकि यादगार पार्टियां जो होती है ना, वो महंगे डेकोरेशन से नहीं बनती बल्कि अच्छे माहौल से और खूबसूरत यादों से बनती है ना।
0: बिल्कुल, तो अगली बार जब किटी पार्टी हो सिर्फ मेन्यू नहीं, सोच बदलिए, कुछ नया जोड़िए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे से सीखिए और ऐसी यादें बनाइए जो तस्वीरों से नहीं दिलों से जुड़ जाए।
1: हाँ, और आप पंछी बनकर गगन में उड़ने लगे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनाड़ी से, और एक ईमेल हमारा इंतजार कर रहा है पढ़ने के लिए। महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि रश्मि जी नमस्कार, आप दोनों को बालकनी में बैठकर मौसम का आनंद लेना, चाय की चुस्की और समोसे के साथ आनंद लेना चाहिए। चलिए हम ले लेंगे बाद में, अभी तो पूरे मानसून पड़ा हुआ है।
1: और साथ में एक और बड़ी खूबसूरत सी मेल आई है, रमीशा जैन हैं आप, वो कह रही हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए वर्षा ऋतु की सबसे प्रिय बात क्या है, तो वो कहती हैं कि मेरा उत्तर होगा कि महाराष्ट्र के घाटों की हरियाली और उस समय ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का अनुभव। भाई क्या बात है। वर्षा के दिनों में वो कहती हैं सह्याद्री पर्वतमाला का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाता है, और चारों ओर फैली हुई हरियाली और पर्वतों को अपनी गोद में समेटे हुए बादल, छोटी छोटी जलधाराएं, शीतल वायु मन को अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने स्वयं को नए रूप में सजा लिया है। जब बादल धीरे धीरे पर्वतों और वनों को घेर लेते हैं तो वह दृश्य शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। वाह, मुझे विशेष रूप से वर्षा ऋतु में महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को लिंगों की यात्रा करना बहुत पसंद है। भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर जैसे तीर्थ स्थलों की ओर जाते हुए घुमावदार घाटों से होकर गुजरना अपने आप में अविस्मरणीय अनुभव है। और मार्ग के दोनों ओर फैले हुए वन, पर्वतों से गिरते हुए असंख्य जलप्रपात और धुंध से ढके हुए शिखर, भाई वाह, यात्रा को केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का साधन ही नहीं रहने देते बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक आनंद का संगम बना देते हैं। भाई मैं तो ये कहूंगी
0: बहुत खूबसूरत। और पता है रश्मि जी, मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो सुन रहे होंगे, वो भी महसूस कर रहे होंगे, जब आप ये बातें बता रही थी, ये पढ़ रही थी, तो हम सब अपने दिमाग में उसको कल्पना कर रहे थे।
1: बिल्कुल रमीशा जैन जी, हम ये कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं, आपने तो शब्द चित्र बना दिया, आंखों के सामने वो चित्र घूमने लग गए, शब्द तैरने लग गए। ऐसा ही लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है घर आंगन, और मेल करते रहिए। मेल बताएंगी मंजुला दोबारा?
0: हाँ, मेल बता देती हूँ। पहले तो विषय जो हमारा प्रश्न है वो बता दूं कि बरसात में आपको क्या करना अच्छा लगता है और बरसात की सबसे अच्छी बात कौन लगती है। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। और अभी जो आपने ये मेल पढ़ा वो ऐसा लग रहा था जैसे रिमझिम के तराने बज रहे हों।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म काला बाजार से।
1: और बारिश की बातें हो रही हैं और हमारे पास मेलों की भी बारिश हो रही है, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। रोनी सेक्टर 8 से संजय कुमार, पुनीत रावत, विजय परवीन कुमार, प्रदीप, अरुण शिवा और ईशा कह रहे हैं कि वर्षा में हरियाली और मिट्टी की सुगंध का बस मजा ही आ जाता है और परिवार के साथ बैठकर बारिश का आनंद ले या घूमना हो तो वो कहते हैं देहरादून जाना उन्हें बहुत पसंद है।
0: क्या बात है। नहीं, देहरादून सच में बारिश में बहुत खूबसूरत
1: जी, देहरादून और मसूरी।
0: और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गुणों के लिए हम हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं वही खजाना हमारे अपने खेतों, हमारी रसोई और आयुर्वेद में सदियों से मौजूद है। तो चलिए करते हैं दिलचस्प तुलना। अकाई बेरी, जिसका नाम आपने सुना होगा, या आंवला। तो अकाई बेरी को रोगों से लड़ने वाला जो तत्व है उसका भंडार कहा जाता है, लेकिन हमारे आंवले में विटामिन सी कई गुना अधिक होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, त्वचा, बाल और पाचन सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। और कीमत, जितने में अकाई बेरी का एक छोटा पैकेट आता है उतने में एक किलो ताजा आंवला मिल जाता है।
1: और इसके अलावा जो केल यानी कि केल या सहजन यानी मोरिंगा के पत्ते भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और केल तो दुनिया कहती है सुपर ग्रीन कहलाती है, थोड़ा महंगा होता है पर इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो। लेकिन हमारे जो अपना जो देसी सहजन के जो पत्ते हैं ना भाई, वो कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन और पोटेशियम से भरे हुए हैं और पोषण के मामले में ये किसी भी विदेशी सुपर फूड से कम नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी मंजुला कई बातों में वो आगे ही है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और कोरियन जिनसेंग की बात बहुत होती है, लेकिन हमारा अश्वगंधा भी कम नहीं है। तनाव कम करने के लिए कोरियन जिनसेंग काफी लोकप्रिय है, वहीं अश्वगंधा सदियों से आयुर्वेद का अभिन्न हिस्सा रहा। आधुनिक शोध भी बताते हैं कि ये तनाव कम करने, अच्छी नींद लाने, ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
1: और क्रेनबेरी और कोकम, भाई क्रेनबेरी जो है उसकी जूस की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन जो कोकम है वो भी रोगों से लड़ने वाले तत्वों से भरपूर है और ये शरीर को ठंडक भी देता है और पाचन में मदद भी करता है और गर्मियों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक पेय है। और मैं तो ये कहूंगी मंजुला, कोकम शरबत है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी इसकी रेसिपीज भी, अगर महाराष्ट्र कोंकण रीजन की बात करें तो जब मैं बंबई प्रवास में रही तो बहुत सुंदर सुंदर बट मीठी मीठी डिशेज जो है वो मैंने वहाँ पे मुझे खाने का अवसर मिला। वाकई ये अच्छा हम लोगों ने आज लिया है कोकम को।
0: और जापानी माचा का नाम तो बहुत है, लेकिन हमारे हल्दी दूध भी कम नहीं है दोस्तों। और कहते हैं कि रोगों से लड़ने वाले तत्व इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। हल्दी में पाए जाने वाले कर्क्यूमिन प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने वाले सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक गिना जाता है।
1: जी बिल्कुल।

0: ये तो मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं कर्क्यूमिन। भाई हमने बचपन में भी हल्दी तेल का तो खूब प्रयोग किया ही है त्वचा के लिए, और दूध में हल्दी डालकर भी हम लोगों ने पी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आपको एक स्टाइलिश नाम चाहिए तो हम इसको वैसे भी आजकल हल्दी टर्मरिक लाते भी तो
0: हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल जी, जो हम घर में माँ और दादी हमें बनाकर देती थी ना दूध उबाल कर हल्दी, रात को कहती थी भाई चोट लगी है तो इसे पी लो अंदर की चोट ठीक हो जाएगी, तो उसका जो थोड़ा सा फैंसी सा सजा धजा जो नाम है वो है टर्मरिक लाते, है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो हम तो ये कहेंगे भाई सेहत का मतलब मंजुला केवल महंगे लेबल नहीं है बल्कि पोषण है, सही पोषण है ना।
1: बिल्कुल सही। और विदेशी सुपर फूड अच्छे हो सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारतीय विकल्पों से बेहतर हो,
0: और क्योंकि भारतीय विकल्प तो पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, हमारे अधिक ताजे हैं, स्थानीय हैं, किफायती हैं और पोषण से भरपूर है ना।
1: और इसलिए अगली बार जब कोई इम्पोर्टेड सुपर फूड की चर्चा करे तो एक नजर अपनी रसोई और अपने खेतों की ओर भी जरूर डालिए, क्योंकि सुपर फूड विदेश में ही नहीं हमारी अपनी थाली में है। स्वस्थ रहिए, स्वदेशी अपनाइए और समझदारी से चुनिए।

0: पे जादू की छड़ी जुगनी संग आंख लड़ी रे।
1: और अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म मधुमती से।
2: और मेरे पास एक और संदेश आ गया है मंजुला, वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार जी कह रहे हैं कि मुझे तो बरसात की याद आ रही है और मरीन ड्राइव पर घूमना याद आ रहा है और अच्छे खान पान के स्टॉल पर गरम गरम वड़ा पाव की मौज लेने की याद आ रही है। भाई वाह। और एक और संदेश हमारे पास आया है, सुरभि हमारे साथ जुड़ गई है मयूर विहार से। वो कहती हैं कि बारिश के बाद आसमान में खिलता हुआ इंद्रधनुष मुझे बहुत पसंद है, ऐसा लगता है सुंदर रंगों से आसमान पर मुस्कान उकेर दी। और वो कहती हैं कि ये सिखाता है जिंदगी में चाहे कितनी भी बारिश हो।

0: मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद रंगों से भरी एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है। इसे जब भी इंद्रधनुष दिखाई देता है तो मैं कुछ पल रुककर उसे निहारना नहीं भूलती। और एक बात और मैं कहूंगी मंजुला, कि ये कार्यक्रम आज हमने बिल्कुल बारिश के गीतों पर रखा, बारिश की बातें करी। हम कहेंगे कि भारत में, हमारे देश में संतुलित बारिश रहे, सब जगह बारिश हो और अन्न धन के देवता प्रसन्न हो, हमारा देश विकास की प्रगति पर चलता रहे।
1: बिल्कुल सही। आप सबका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म है प्यासा सावन।
1: और इसी के साथ मंजुला अपने इस कार्यक्रम को, इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे, खुश रहिए और दूसरों की मुस्कान का कारण बनिए।
0: दीजिए मंजुला और
1: रश्मि कुकरेती को इजाजत।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला।

0: अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him, having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan temple had also given him the opportunity to initiate renovation.

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 30 जुलाई 1982 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम रोग उस वर्ष में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सुभाष घई की फिल्म विधाता के बाद इस फिल्म ने कमाई में दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही फिल्म का संगीत बहुत ही शानदार और सदाबहार रहा। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा रचित था और गीत संतोष आनंद, नरेंद्र शर्मा और आमिर कजलबश द्वारा लिखा गया था। तीसवें फिल्मफेयर पुरस्कारों में राज कपूर साहब को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए, पद्मिनी कोल्हापुरे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और संतोष आनंद जी को गीत मोहब्बत है क्या चीज के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए। बाकी और 8 कैटेगरीज फिल्मफेयर के लिए नॉमिनेटेड रहे। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी सुपरहिट रही होगी।

चंद्रा की ये पहली फिल्म थी। कामना चंद्रा ने अपनी माँ से एक रियल लाइफ कहानी सुनी थी। उन्होंने ये कहानी राज कपूर साहब को सुनाने का फैसला किया। उन दिनों राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। जब कामना चंद्रा ने ये कहानी राज साहब को सुनाई तो पहले वो और बाकी लोग उनके बात से सहमत नहीं हुए, पर बाद में राज साहब ने फिल्म बनाने का फैसला किया। पर कामना चंद्रा की कहानी अधूरी थी। फिल्म के इंटरवल के बाद जो कुछ भी दिखाया गया है उसे राज कपूर साहब ने खुद से जोड़कर फिल्म की कहानी को पूरा किया और नतीजा ये निकला कि फिल्म एक मिसाल बन गई।

श्रोताओं, इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अपनी सादगी भरी और दिल छू लेने वाली अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने किरदार में मासूमियत और मजबूती दोनों को बड़ी खूबसूरती से निभाया, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तब वो महज केवल 17 वर्ष की ही थी। इसके साथ शम्मी कपूर जैसे कलाकारों ने भी कहानी को गरिमा और गहराई दी।

श्रोताओं, प्रेम रोग सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि ये समाज में संवेदनशीलता और बदलाव का संदेश देने वाली फिल्म थी। समीक्षकों की सराहना और व्यावसायिक सफलता दोनों ही इस फिल्म को मिली, जिसने राज कपूर साहब की विरासत को और मजबूत किया। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे को ऋषि कपूर को थप्पड़ मारने वाले सीन के लिए 8 रीटेक लेने पड़े थे। फिल्म में शमी कपूर ने राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म में पहली बार काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस में 25 हफ्ते तक चली थी और सिल्वर जुबली साबित हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो नाल जोगकार्ता विच प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर की संभाल विच भारत की भागीदारी दोहां देशां दी सांझी सभ्याचारक विरासत नूं दर्शाउंदी है। श्री मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूजे पड़ा ते अज मेलबोर्न पहुंचणगे। ईरान ने अमरीकी हमलों तों बाद अमरीकी फौजी टिकाणे ते जवाबी हमले कीते ने। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन विच दक्षण पछमी मानसून के पंजाब हरियाणा ते राजस्थान के बाकी हिस्सों विच अगे वधण की संभावना जताई है। अर्जेंटीना ते स्विट्जरलैंड दीआं टीमां फीफा फुटबाल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल पहुंच गईआं ने। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरक सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो रहे हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोजा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सके। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमले के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया। और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के हमराह आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रिवायती अंदाज में खैरमकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने 9वीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ्फुज़ की जारी कोशिशों का

0: जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्रवोबो सुबियांतो ने कहा कि प्रम्बानन भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कम्प्लेक्स के तहफुज और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकर्ता में प्रम्बानन मंदिर में खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरासत का तहफुज करने पर इंडोनेशिया के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफुज में भारत की शराकतदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत का इजहार होता है।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाए हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वो मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतअद्दिद मौके मिलने को अपनी अच्छी किस्मत समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकर्ता के मकाम पर प्रम्बानन मंदिर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत का हामिल है क्योंकि वो इसकी तामीर व तरक्की से बराह रास्त जुड़े हुए हैं।
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में ताउन को उसत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में सिंगोसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशावर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहल कदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और ताउन को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत नई दिल्ली में आसियान भारत की एशिया की तिजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेजबानी कर रहा है ताकि आसियान भारत तिजारती समझौते का मजीद जायजा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतालिका मीटिंगें इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जाएंगी जिनमें कुछ अरकान वहां मौजूद हैं जबकि बाज अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत जेली कमेटियों को उनके काम से मुतल्लिक शोबों के बारे में कलीदी नवीयत की रहनुमाई फराहम हुई है। ब्रिक्स मुल्कों के खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। ये इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तग़ज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में ख्वातीन की क़यादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का अहतमाम किया गया है। ईरान ने अपने सूबे हॉर्मुज

0: Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormozgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. Fifth Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और

0: जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगे। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई EMI नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक VK बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ

0: की बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज़ जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थ

0: यात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त हो रहा है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा के किस्से सुनाएंगे जिन्होंने अपनी मासूमियत, चुलबुले अंदाज और बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों पर राज किया। इनका फिल्मी सफर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ और फिर एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह जी की। आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 1958 को नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ। आकाशवाणी की तरफ से इन्हें जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नीतू सिंह का फिल्मी करियर और पर्सनल लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, इस बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे उनकी फिल्म से एक गीत और फिल्म का नाम है यादों की बारात।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो है नीतू सिंह, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीतू सिंह का असली नाम हरनीत कौर है। इनका जन्म पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। पिता का नाम दर्शन सिंह और माँ का नाम राजी कौर सिंह था। जब नीतू सिंह बहुत छोटी थी तब इनके पिता का निधन हो गया था। फिर इनकी माँ राजी ने पूरे परिवार को संभाला, आर्थिक तंगी का सामना भी किया, और यही वजह थी कि नीतू ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनकी पहली फिल्म 1966 में रिलीज हुई सूरज, जिसमें इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई। फिल्म में इनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें 10 लाख, दो कलियां, वारिस और पवित्र पापी शामिल है। दो कलियों में इन्होंने बहनों का डबल रोल किया था, जिसकी बहुत तारीफ हुई। फिर आगे चलकर कैसे इन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर सक्सेस पाई, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पर फिलहाल वक्त हो गया है इनकी फिल्म दीवार का ये रोमांटिक सॉन्ग सुनने का।
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं नीतू सिंह, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत नीतू सिंह ने 1973 में फिल्म रिक्शावाला में लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई। ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली। फिर इसी साल नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में इनके डांस नंबर ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिर इन्होंने दीवार, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर जैसे हिट फिल्मों में अपनी चुलबुली और रोमांटिक एक्टिंग दर्शकों को एंटरटेन किया। नीतू सिंह ने वैसे तो कई एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन शेयर किया, लेकिन ऋषि कपूर के साथ इनकी जोड़ी बेहद खास थी। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया, और उस दौर की ये जोड़ी सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गई। आगे ये जोड़ी कैसे रियल लाइफ में भी हिट हुई जानेंगे, पर वक्त हो गया है फिल्म खेल खेल में का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनने का।

दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से इनकी शादी हुई है। बेटा रणबीर कपूर बॉलीवुड का एक सफल एक्टर है। शादी के बाद नीतू ने करियर के पीक पर होने के बावजूद एक्टिंग से संन्यास लेने का फैसला किया और करीब 26 साल बाद वापसी की। क्या नीतू सिंह का कमबैक सफल साबित हुआ, ये हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म रफू चक्कर का ये दिलकश सा गाना।

आकाश में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं नीतू सिंह, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपके प्यारे प्यारे मेल हमारे पास आ गए हैं तो उसे भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है हमारे पास ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुलराल और अविराज जी का, और ये है पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। ये लिखते हैं होस्ट राखी बनर्जी जी, गुड आफ्टरनून। हम भी इस शो में बने हुए हैं एक ही कलाकार में, नीतू जी की बेहतर जानकारी मिल रही है। नाइस सॉन्ग, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आगे बढ़ते हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी का मेल है, और ये है साहजी बोखड़े, श्रीमती नंदा हनुमान, हिंगोली महाराष्ट्र से, और ये हैं गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डुंडी।

प्रमोद कुमार डुंडे का, और आगे बढ़ते हैं। और ये है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखती हैं आदरणीय राखी बैनर्जी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं एक जिसमें आज आप बात कर रही हैं अभिनेत्री नीतू सिंह की उच्च कोटि की प्रस्तुति, रोचक जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। ज्योति मक्कर, मन्नत भरत और कमल पिंगावाला चौक से हैं, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार। संबल फाकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। और आगे बढ़ते हैं, अमर रमेश कुमार खत्री जी हैं, और ये हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, नीतू सिंह पर केंद्रित आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और ये है हर्षित, जय, तेजस और मीना, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, बेडी नाना जी तामसी से। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि करीब 26 साल के गैप के बाद जब नीतू सिंह ने 2009 में फिल्म लव आजकल में एक कैमियो रोल के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की, ठीक इसके अगले ही साल 2010 में इन्होंने फिल्म दो दुनी चार में अपने पति ऋषि कपूर के साथ लीड रोल किया। सालों बाद भी इन दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और नीतू जी की एक्टिंग की तारीफ हुई। फिर इन्होंने जब तक है जान फिल्म में भी एक कैमियो किया। बेशरम फिल्म में अपने बेटे रणबीर और ऋषि कपूर के साथ एक्टिंग की। आगे इन्होंने जुग जुग जियो फिल्म में भी एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाया है। नीतू सिंह के कमबैक से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा कभी फीकी नहीं पड़ती। नीतू सिंह को इनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 2012 में इन्हें मुंबई के बांद्रा बेस्ट स्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स में शामिल किया गया, जहां इनके हाथ के निशान को रिजर्व किया गया। ये दो बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। मौजूदा दौर में नीतू सिंह बहुत से प्रोजेक्ट्स काम कर रही हैं और बहुत से रियलिटी शोज़ में भी एक्टिव हैं। वाकई में नीतू सिंह का एक सदाबहार अदाकारा रही, जिन्होंने अपने जीवन और करियर दोनों में असाधारण छाप छोड़ी है।

दोस्तों, प्रियतमा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद हम जुड़ेंगे आपके साथ मैटिनी मेलोडीज में।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज़ का। तो अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार स्वीकार कीजिए और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। जब भी हम 50 और 60 के दशक के गाने सुनते हैं तो दिल को एक अलग सा ही सुकून मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन खूबसूरत गानों के पीछे कितनी मेहनत, कितनी दिलचस्प कहानियाँ और कितने अनसुने राज छिपे हुए हैं। आज तो एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए ढेर सारी तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन उस दौर में कलाकारों के पास ना आधुनिक मशीनें थी और ना ही कंप्यूटर, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए जो आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगले आधे घंटे में हम खोलेंगे गोल्डन एरा की कुछ ऐसी ही सीक्रेट राज, जिसे सुनकर आप आज इन गानों को एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से सुनेंगे। तो चलिए रेडियो की वॉल्यूम को थोड़ा सा अपना बढ़ा लीजिए और शुरू करते हैं आज का ये सफ़र आपके साथ। आज की हमारी पहली कहानी है जुड़ी हुई है गानों की रिकॉर्डिंग से। आजकल क्या होता है कि अगर गिटार वाले ने गलती की तो सिर्फ गिटार दोबारा से रिकॉर्ड हो जाता है, सिंगर ने गलती की तो सिर्फ सिंगर की लाइनें ठीक कर दी जाती हैं। इसे कहते हैं मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, लेकिन 50 और 60 के दशक में ऐसा नहीं होता था। उस समय पूरा ऑर्केस्ट्रा, सारे म्यूजिशियन और गायक एक साथ खड़े होकर लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, लेकिन ज़रा सोचिए लगभग 100 कलाकार मिलकर गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में किसी ने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो पूरा गाना फिर से शुरू। कई बार तो एक गाने के लिए दर्जनों टेक लेने पड़ते थे तब जाकर एक परफेक्ट गाना बनता था। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही फिल्म से सॉन्ग और याद करते हैं उसके पीछे छिपी हुई मेहनत।

श्रोताओं, अभी आपने मधुमति फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे शानदार गायिका शमशाद बेगम जी की। उनकी आवाज़ इतनी दमदार और बुलंद थी कि जब वो माइक के पास गाती थी तो रिकॉर्डिंग में आवाज़ बहुत तेज आ जाती थी। इसलिए रिकॉर्डिंग इंजीनियरों ने एक अनोखा तरीका निकाला। रिकॉर्डिंग के वक्त बाकी सारे सिंगर्स को माइक के पास खड़ा कर किया जाता था, लेकिन शमशाद जी को कई फीट दूर खड़ा किया जाता था। मज़ेदार बात ये थी कि इतने दूर खड़े होकर भी उनकी आवाज़ सबसे अलग और सबसे प्रभावशाली सुनाई देती थी। आइए सुनते हैं उन्हीं की उस जादुई आवाज़ का एक शानदार सा नमूना।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज़, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त और होस्ट राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें मेल करके ज़रूर बताएंगे, और आपको हमारा मेल आईडी तो पता ही होगा, iPRADIODELHI@gmail.com। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बाहर फिल्म के इस गीत के बाद आप सभी ने राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420 का वो मशहूर गाना तो सुना ही होगा, रमैया वस्तावैया। गाना तो बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हिंदी नहीं बल्कि तेलुगु भाषा के शब्द हैं, जिसका मतलब है राम क्या तुम आओगे। अब आपको बताती हूँ ये गाना कैसे बना। कहते हैं कि संगीतकार शंकर जयकिशन, राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र एक बार मुंबई के बाहर घूम रहे थे। वहीं पास में एक तेलुगु ढाबा मालिक को ये शब्द गुनगुनाते हुए सुना था, और उन्हें इतना पसंद आया कि इस शब्द को अपने गाने का हिस्सा बना दिया। और नतीजा क्या हुआ, आज 70 साल बाद भी ये गाना हर भारतीय की जुबान पर है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज। दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, अब एक और मज़ेदार किस्सा हम आपको बताते हैं। ये किस्सा है एक संगीतकार के दो पहचान के बारे में। महान संगीतकार श्री रामचंद्र को आप सभी जानते हैं। 50 के दशक में श्री रामचंद्र अपनी बेहद गंभीर क्लासिकल और संजीदा धुनों के लिए जाने जाते थे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके पास सिर्फ इमोशनल गानों के लिए आते थे, लेकिन रामचंद्र साहब के अंदर एक चुलबुला और मॉडर्न सिंगर भी छिपा था जो वेस्टर्न और रॉक एंड रोल गाना चाहता था। अब परेशानी ये थी कि अगर वो ऐसे मजाकिया गाने गाते तो उनकी क्लासिकल म्यूजिक डायरेक्टर वाली जो इमेज थी वो खराब हो जाती। तो उन्होंने एक तगड़ा रास्ता निकाला। जब भी वो कोई हल्के फुल्के फनी या वेस्टर्न अंदाज के गाने गाते तो क्रेडिट्स में अपना नाम अन्ना चितलकर लिखवाते थे। सालों तक दुनिया को पता ही नहीं चला कि ये एक ही इंसान की दो अलग पहचान है। तो चलिए सुनते हैं उनके इसी सीक्रेट अवतार का एक बेहद मज़ेदार और खूबसूरत सा गाना।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं किशोर कुमार जी की। किशोर कुमार का नाम आते ही उनकी योडलिंग की याद आ जाती है। कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में किशोरदा जैसा योडलिंग आज तक कोई भी सिंगर नहीं कर पाया। लेकिन क्या आपको पता है कि किशोरदा ने ये अनोखा स्टाइल कहाँ से सीखा? कहते हैं उनके भाई अनूप कुमार के विदेशों से लाए हुए कई वेस्टर्न म्यूजिक के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जैसे विदेशी गायक जिमी रॉजर्स और टेक्स मार्टिन की रिकॉर्ड्स हुआ करते थे। किशोरदा को वो गाने बहुत पसंद थे। किशोरदा चुपके से वो रिकॉर्ड सुनते और लगातार प्रैक्टिस करते। यही आगे चलकर उनकी पहचान बनी और भारतीय संगीत को एक बिल्कुल नया अंदाज मिला। तो आइए सुनते हैं किशोरदा की उस जादुई योडलिंग का एक एवरग्रीन सॉन्ग।

जी हाँ श्रोताओं, 5 रुपया 12 आना ये गीत था, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। तो श्रोताओं, आज का आखिरी जो कहानी है वो जुड़ा है महान फिल्मकार गुरुदत्त साहब से। साल 1959 में इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, कागज़ के फूल। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उनका प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल मुश्किल दौर से गुजरने लगा। उनके पास अगली फिल्म करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन और स्टूडियो भी बंद होने के कगार पे था। ऐसे डूबते हुए वक्त पे उन्होंने साल 1960 में एक फिल्म बनाई, चौदहवीं का चांद। गुरुदत्त साहब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन जैसे ही इस फिल्म का टाइटल ट्रैक रेडियो पर रिलीज हुआ था, लोगों के दिलों में बस गया। फिल्म सुपरहिट हुई और कहते हैं कि इस सफलता ने गुरुदत्त साहब के स्टूडियो को नई जिंदगी दे दी। इसे कहते हैं संगीत का असली ताकत। तो चलिए इसी गीत को सुनते हैं।

श्रोताओं, आज के मैटिनी मेलोडीज में बस इतना ही। अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प किस्सों और बेहतरीन गीतों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए गीत सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

वाला होता है, जिन कामों को समाज के कल्याण के नाम से जाना जाता है। जिन दिनों कहकशा, सीमा, तन्नू एक साथ क्लास में पढ़ते थे, उनके साथ एक बॉबी नाम का लड़का भी पढ़ता था। क्लास में साथ बैठने वाले बच्चों ने बताया कि बॉबी उन आवारा और गलत लड़कों के साथ खड़ा होने लगा है जो कई मर्तबा पुलिस से थप्पड़ खा चुके हैं। पढ़ाई में भी वो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं लेता था। तन्नू की तरफ उसका बढ़ता रुझान कुछ और ही इशारे करता है। सुना है तन्नू की दोस्ती अब बॉबी से होने वाली है, जो उसे मुख्तलिफ मोबाइल गेम के सहारे बड़ा आदमी बनाने के ख्वाब दिखा रहा है। कहकशा और सीमा को फिक्र हुई कि हमारा एक साथी, जिसे हमने अपनी मोहब्बत से बदलना चाहा था, अब वो इस अंधेरी दुनिया में जा पहुंचेगा जहां से रोशनी का भी गुजर नहीं होता। इसलिए अभी इसी वक्त हमें कुछ करना होगा। हम जिस रोशनी का ख्वाब सजाए बचपन से बड़े होकर स्कूल और अब कॉलेज में पहुंचे हैं, वो रोशनी मद्धम ना हो जाए। कहकशा ने और सीमा ने अपने घर जाकर तन्नू के ताल्लुक से सारी जानकारी अपने वालदैन को दी और दोनों ने तन्नू से मिलने की बात करते हुए उनको दिलासा दिलाया। एक दिन मौका पाकर तन्नू को कहकशा और सीमा ने अपने साथ ही कर लिया और तयशुदा प्लान के मुताबिक जहां कहकशा और सीमा के माँ बाप पहुंचे हुए थे, वहां तन्नू, कहकशा, सीमा और तन्नू भी पहुंच गए। इस बात का तन्नू को जरा सुराग नहीं लगने दिया कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। जब तन्नू ने कहकशा और सीमा के माँ बाप को वहां देखा तो वो घबराई और इस वक्त तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में आने लगे, क्योंकि तन्नू ने गलत साथियों की सोहबत जो इख्तियार कर ली थी। वो नहीं जानती थी कि इसके इर्द गिर्द साए की सूरत रहने वाली उसकी बेहतरीन दोस्तों में से एक जज और दूसरी आला पुलिस ऑफिसर बनने के ख्वाब सजाए हुए हैं। जो ख्वाब उन्होंने देखा है उसे वो हकीकत में बदलने वाली है। इल्म की वो रोशनी जिसका ख्वाब बचपन में देखा करती थी, जिसके बहुत से किस्से उन्होंने अपने बचपन में अपनी दादी अम्मा की जुबानी सुने थे, अब वो हकीकत में बदलने वाला है। बुराई का खात्मा न सिर्फ तन्नू की जात से करने वाली है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाने वाली है। तन्नू से बात करते हुए वो सब अपने असल मकसद पर आ गईं, जहां तन्नू को ये बताना उन दोनों की मंशा थी कि अगर पढ़ने लिखने में इतनी दिलचस्पी ली होती जितनी दौलत पाने में ली है, तो आज उन बदनाम साथियों और ख़ास तौर से बॉबी नाम के लड़के के साथ तुम्हारा शुमार नहीं होता। कहकशा और सीमा ने कहा, अभी वक्त है कि तुम उससे दूरी अपनाओ और अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने की फिक्र से उसी अंदाज से करो जिसकी नसीहत हर स्कूल और पाठशाला में की जाती है। हर एक माँ बाप जिस रास्ते से दूरी बना के चलने का मशवरा अपने बच्चों को देते हैं, तनु तुम भी उसी रास्ते पर चलोगी तो हमें खुशी होगी। लेकिन कहकशा और सीमा ने कभी अपने वालदैन से ये नहीं बताया था कि जो बातें समझाने और सीधे रास्ते पर लाने की नीयत से वो तन्नू से कर रहे हैं, इस तरह की बातें प्राइमरी के दौर से उन दोनों ने हमेशा तन्नू से की हैं। मोहब्बत, मुरव्वत और हमदर्दी से पेश भी आई हैं, मगर तन्नू में एक ज़रा तब्दीली नहीं आई। दुनिया में मोहब्बत से सब कुछ मुमकिन बनाया जा सकता है, ये पढ़ा है और सुना है, लेकिन हम तन्नू को बदलने में अभी तक नाकाम हुए हैं। तन्नू के सोच में तब्दीली न आने की वजह उसका वो बचपन था, जिसका खतावार ये समाज था, जिसकी अंधी पैरवी वहाँ के लोग क्या करते थे। कैसा ज़माना आ गया है, धर्म मज़हब की बातें करने वाले और नेक पारसा बने दिखने वाले भी हर किसी से मोहब्बत से पेश नहीं आते। तन्नू को बचपन से एक ही उमंग थी और वो उमंग थी दौलत की, जिसके बल पर वो हर एक चीज़ पाने का दावा करती थी। उसने बॉबी की चंद दिनों की सोहबत में जाकर देख लिया था कि पैसा वाकई बड़ी चीज़ है, इसलिए लालच जहन में रखकर अगर दुनिया में जिया जाए तो हर्ज ही क्या है। कहकशा और सीमा के वालदैन ने ठंडे दिमाग से समझाने के तौर पर कई मिसालें ऐसी भी तन्नू को दी जिन्हें टेलीविज़न चैनल पर खबरों के जरिए सारे मुल्क में आम किया जा चुका था, जिनके बारे में हर एक को जानकारी थी। तन्नू समझ नहीं पा रही थी कि आखिर पड़ोसी मुझे किस लिए समझा रहे हैं। नौजवानी में अक्सर बड़ों की बातें बुरी महसूस होती हैं, तन्नू को भी ऐसी ही बुरी लगती रहीं। कहकशा और सीमा के वालदैन ने अपनी औलाद की तरह दस्ते शफकत रखते हुए आखिरी कोशिश भी तन्नू को दुरुस्त राह पर लाने, सुधारने की नीयत से कर डाली, लेकिन उस पर उसका कोई असर ना हुआ। इस तरह तन्नू, कहकशा और सीमा की राह उस दिन से अलग हो गई। आज मुल्क में कहकशा और सीमा यानी दोनों बच्चों की तरक्की की मिसाल दी जाती है और हक के तालीम के साथ हुकूमत हिंद की तालीमी पॉलिसियों का भी जिक्र किया जाता है।
जिनके जरिए दिगर बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ रही।

0: हैं और समाज में एक मकाम बनाने में कामयाब हो रही हैं। अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में तनु नाकाम रही, न दौलत हासिल हुई और न आला तालीम हासिल कर सकी। बढ़ती उम्र के साथ रस्म रिवाज के धागों में बांध दी गई, यानी उसकी शादी हो गई। कहकशा जज बनी और सीमा पुलिस की आला ऑफिसर। इस तरह इल्म की रोशनी का दोनों का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और दोनों बच्चियों ने बड़े होकर अपने माँ बाप और मुल्क का नाम रोशन किया।
1: सामीन, अभी आप मोहतरमा आफिया खान से उनका अफसाना सुन रहे थे। अफसाने का उनवान था रोशनी का ख्वाब। आइए सामीन, पंकज उदास की आवाज में गजल सुनते हैं। कलाम है मुमताज राशिद का।

0: सामीन, अभी आप पंकज उदास की आवाज में गजल सुन रहे थे। कलाम था मुमताज राशिद का। सामीन, कबीर का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। बकौल रहीम, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। सामीन, दोहा हिंदी और उर्दू शायरी की एक मकबूल सिंफ है। दो मिस्रों में शायर कोई गहरी बात, नसीहत, फलसफा, अखलाक या जिंदगी के किसी अहम पहलू को नहायत सलीस और मौसर अंदाज में बयान करता है। कबीर, रहीम और तुलसीदास के अलावा अमीर खुसरो और बाबा फरीद के दोहे मशहूर हैं। आज भी दोहे लिखे जा रहे हैं, जिनमें जमीलुद्दीन आली, अजमतुल्ला खां, निदा फाजली, जफर गोरखपुरी, निगार सिद्दीकी वगैरह शामिल हैं। आइए सामीन, इसी सिलसिले में जनाब मुजफ्फर हुसैन गजाली से उनकी तकरीर सुनते हैं। मौजू है उर्दू में दोहे की रिवायत।
1: दोहा उर्दू अदब की शेरी रिवायत का एक ऐसा हीरा है जिसकी जड़ें इस धरती की मिट्टी, सकाफत और अवामी शऊर में बहुत गहरी हैं। अगरचे दोहा बुनियादी तौर पर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से होता हुआ हिंदी शायरी का तुर्राई इम्तियाज बना, बाद अजां यही सिंफ ब्रज भाषा, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी और दीगर शुमाली हिंद की जबानों में मकबूल हुई, क्योंकि उर्दू जबान की पैदाइश, तश्कील और इर्तका का हिंदी ब्रज भाषा और खड़ी बोली से गहरा ताल्लुक है। इसलिए जब उसे इन जबानों से फैज हासिल किया तो दोहा भी उसके अदबी सरमाए का हिस्सा बन गया। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, रसलीन, रहीम, कबीर, गुरु नानक, मीरा जी वगैरह ने दोहे की रिवायत को आगे बढ़ाया। 20वीं सदी में उर्दू शायरों ने दोहे को दोबारा जिंदा किया। उस दौर के शोरा ने हिंदी रिवायत और उर्दू की लिसानी हुस्न को, उर्दू के लिसानी हुस्न को मिलाकर दोहे तख्लीक किए। दोहे की सबसे बड़ी खसूसियत इख्तसार, मानवियत, सादगी, रवानी, असर आफरीनी। दोहा सिर्फ दो मिसरों का नाम नहीं, बल्कि ये समुद्र को कूजे में बंद करने का फन है। दोहे की अपनी मखसूस बहर और मात्राई तरतीब होती है। रिवायती तौर पर पहले तीसरे हिस्से में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे हिस्से में 11 मात्राएं शुमार की जाती हैं। उर्दू में दोहे की रिवायत इतनी ही कदीम है जितनी खुद उर्दू जबान की तारीख। हजरत अमीर खुसरो को उर्दू और हिंदी का मुश्तरक असासा माना जाता है। उन्होंने फारसी के साथ साथ हिंदी, हिंदवी में भी तबा आजमाई की। उनके दोहे तसव्वुफ, हिजरो विसाल और लोक रंग का बेहतरीन नमूना है। उनका ये दोहा तारीख के सफात पर अमर है, जो उन्होंने अपने मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के इंतकाल पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, सांझ भई चहुदेस। इस दोहे में जो सोज, सादगी और गुदाज है वो उर्दू शायरी की रिवायत का खमीर बन गया। कुरून वस्ता में भक्ति तहरीक और सूफिया इकराम के पैगाम को अवाम तक पहुंचाने का दोहा सबसे मुअसर जरिया साबित हुआ। बाबा फरीद, गंज सकर, कबीरदास, गुरु नानक और रहीम के दोहे अवामी जबान के बहुत करीब थे। कबीर के बगैर दोहे की रिवायत का जिक्र नामुकम्मल है। उन्होंने मजहबी तंग नजरी, रस्म परस्ती और समाजी बुराइयों पर नहायत मौसर अंदाज में जरब लगाई है। कबीरदास का ये दोहा मुलायदा हो, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोए, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरी दीदार। मुगलिया दौर के अजीम शायर अब्दुल रहीम खान खाना ने भी दोहे को अखलाकी और समाजी तालीम का जरिया बनाया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसमें तकबुर और बेफायदा बड़ाई पर तंज किया गया है। उर्दू अदब का बाकायदा आगाज दक्कन जनूब में हुआ। दक्कन के सलातीन और शोरा ने मुकामी जबान और असनाफ को दिल खोल कर अपनाया। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर थे। अगरचे उन्होंने गजलें और नज्में ज्यादा कही, लेकिन उनके कलाम पर दोहे के असरात साफ नजर आते हैं।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: 听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听。
1: 再见。
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना
3: नमस्कार मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल खबरों से जुड़ा यह कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और मेरे साथ हैं विजेता
4: नमस्कार सभी श्रोताओं को और स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में
3: जी बिल्कुल और विजेता आज जो इस अंक में हम चर्चा करेंगे फीफा विश्व कप की जहां बेहद रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं और कल के मुकाबले भी कुछ अलग नहीं थे जहां अर्जेंटीना ने मिस्र को हराया और स्विट्जरलैंड ने शूटआउट में कोलंबिया को पराजित किया। हालांकि तीन अंतिम 13 मिनट में 3 गोल करके अर्जेंटीना जीती है, नाटकीय अंदाज में वापसी की है, लेकिन मिस्र ने इस जीत पर अर्जेंटीना की जीत पर को विवादास्पद भी बताया है। बहरहाल इसके अलावा हमारा जो चर्चा हम इसमें करेंगे वो भारत इंग्लैंड के बीच तीसरी T20 की होगी जहां भारतीय टीम को 125 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा विंबलडन पे भी चर्चा होगी, अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी पे, शॉटगन विश्व कप और तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 4 पर भी हम चर्चा करेंगे। तो विजेता क्यों ना सबसे पहले फीफा विश्व कप की बात की जाए और ये जो मुकाबला अर्जेंटीना और मिस्र के बीच खेला था उस पर ये रिपोर्ट पेश है। अर्जेंटीना और मिस्र के बीच फीफा विश्व कप का यह मुकाबला रोमांच का नया पैरामीटर बन गया। इस मुकाबले में अर्जेंटीना जीत जरूर गया लेकिन 79वें मिनट तक विश्व चैंपियन टीम 2 गोलों से पिछड़ रही थी। उसके बाद लगभग 13 मिनट में अर्जेंटीना ने 3 गोल करके नाटकीय वापसी की और मिस्र को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर। दरअसल यह मुकाबला रोमांच का पूरा पैकेज था जहां मिस्र की मजबूती दिखी तो मेसी का मैजिक भी। जीत के बाद लियोनल मेसी की आंखों से छलकते आंसू बेहद कड़े मुकाबले की कहानी बयां कर रहे थे। उलटफेर की कगार से निकलकर मिस्र की झोली से जीत छीनने वाली अर्जेंटीना टीम का मैच के बाद मेसी को हवा में उछालना और सामूहिक डांस करना टीम की राहत और सुकून का संकेत दे रहा था, वरना खेल रक्षण तो मिस्र की टीम का भी लाजवाब रहा था, खासकर गोलकीपर मोस्तफा शोबेर का जिन्होंने लियोनल मेसी का पेनल्टी भी रोक दिया था। इसके अलावा भी डाई लगाकर कई शानदार बचाव किए थे।
5: No, he can't. Not yet anyway. He's denied by Mustafa Shabir.
3: पहले हाफ में मिस्र ने शानदार शुरुआत की। 15वें मिनट में सेंटर बैक यासर इब्राहिम ने मरवान अत्या के कॉर्नर पर हेडर लगाकर गोल कर दिया था।
5: What a start to the match. What a header. यासर इब्राहिम।
3: मध्यांतर के समय मिस्र 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने आक्रामक रुख अपनाया लेकिन कहीं न कहीं इस कोशिश में उसका रक्षण कमजोर पड़ गया। उसी का फायदा उठाकर मिस्र ने काउंटर अटैक बोली। अगर रेफरी फ्रांसवा ने VAR तकनीक की मदद से मिस्र का एक गोल अमान्य नहीं किया होता तो कहानी उलट भी हो सकती थी। इस मूव के समय मोहम्मद सालेह ने अर्जेंटीना के डिफेंडर लियांड्रो पेरेडेस को टैकल करते समय जर्सी पकड़ ली थी। उसके बाद सालेह गेंद लेकर आगे बढ़े और बॉक्स में मोस्तफा जीको को गेंद बढ़ा, उन्होंने गोल कर भी दिया था लेकिन रेफरी ने

0: अर्जेंटीना के डिफेंडर लियांड्रो के खिलाफ फाउल के कारण गोल को मान्यता नहीं दी। गोल अमान्य होने के बावजूद मिस्र ने हौसला नहीं खोया और जल्द ही 2-0 की बढ़त कर ली, जब 67वें मिनट में मुस्तफा जीको ने गोल कर दिया। यह गोल भी काउंटर अटैक पर हुआ, जब अर्जेंटीना का कॉर्नर मिस्र ने क्लियर कर दिया था और मोहम्मद सालेह ने तेज काउंटर अटैक बोला, गेंद हैसम हसन को दी जिन्होंने पीछे की ओर कट बैक पास दिया, जिस पर मुस्तफा जीको ने गोल किया। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना 2 गोलों से पिछड़ गया तो लगा कि इस विश्व कप के सबसे बड़े उलटफेर की तैयारी हो गई है, लेकिन मेसी को खुद पर भरोसा था और टीम को उन पर, और अर्जेंटीना ने 4 मिनट के अंतराल में 2 गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। अब तक विश्व कप में 13 मुकाबले ऐसे हुए हैं जब 0-2 से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार 2 गोलों से पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने जीत हासिल कर वह मिथक भी तोड़ दिया। पहले 79वें मिनट में क्रिस्टियानो रोमेरो ने मेसी के क्रॉस पर शानदार हेडर लगाकर स्कोर 1-2 किया और 83वें मिनट में मेसी का असल मैजिक दिखा जब लियोनल ने एल्वारेज के पास पर लेफ्ट फुटर की मदद से जोरदार हाफ वाली से बराबरी का गोल कर दिया। यह इस विश्व कप में मेसी का 8वां और ओवरऑल विश्व कप में उनका 21वां गोल रहा। गोल्डन बूट की रेस में मेसी सबसे आगे चल रहे हैं। मेसी विश्व कप के लगातार 6 नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा 9 गोलों में असिस्ट करने का रिकॉर्ड भी हो गया है। मैच में मेसी ने 1 गोल किया और 1 असिस्ट भी किया। वैसे तो मेसी ने 1 पेनल्टी मिस भी की और इस विश्व कप में उन्होंने अब तक 2 पेनल्टी मिस कर दी है, 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और दूसरी इस मुकाबले में मिस्र के खिलाफ। वे ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1 ही विश्व कप में 2 पेनल्टी मिस की। निर्णायक गोल एंजो फर्नांडिस ने अंतिम क्षणों में करके अर्जेंटीना को 3-2 से जीत दिला दी और टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई, जहां उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। बेशक मिस्र ये मैच हार गया, लेकिन फुटबॉल प्रेमियों के दिल तो उसने जीत लिए। मिस्र के स्टार मोहम्मद सालेह का यह संभवतः अंतिम विश्व कप माना जा रहा है। सालेह ने मिस्र को प्री क्वार्टर तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखी। 115 मैचों में 67 गोल करने वाले मिस्र के इस स्टार को दर्शकों ने करतल ध्वनि से विदाई दी। और विजेता दूसरे मुकाबले की बात करें तो वो भी किसी रोमांच से कम नहीं था, पेनल्टी शूट आउट में निर्णय हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे उस मुकाबले पर?
1: और अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, जो खेला गया वैंकूवर के बीसी प्लेस में, जहां स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच मुकाबला 120 मिनट तक बराबरी पर टिका रहा। दोनों टीम गोल नहीं कर पाई। कोलंबिया की टीम आक्रामक अंदाज में खेली, जबकि स्विट्जरलैंड ने डिसिप्लिन्ड और डिफेंसिव रणनीति अपनाई। एक्स्ट्रा टाइम में कोलंबिया के पास 2 बड़े मौके आए। जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉसबार से टकराया और जोमिंटन कंपोज का शॉट गोलकीपर के अकेले रहते हुए भी बाहर चला गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा। शूटआउट बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने बारी बारी से गोल किए, लेकिन कोलंबिया के डिफेंडर डाविनसन सांचेस का शॉट क्रॉसबार से टकराया और कुको हार्डनेस का शॉट गोलकीपर ग्रेगोर कोबेल ने बचा लिया। आखिरकार रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को 4-3 से जीत दिला दी। स्विट्जरलैंड की फुटबॉल टीम ने 1954 के बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। 72 साल पहले अपनी मेजबानी में हुए टूर्नामेंट में टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। स्विट्जरलैंड ने इस जीत के साथ एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये पहली बार है जब टीम ने किसी एक विश्व कप में नॉकआउट चरण के 1 से अधिक मुकाबले जीते हैं। इससे पहले स्विस टीम कभी भी विश्व कप के एक ही संस्करण में लगातार 2 नॉकआउट जीत दर्ज नहीं करवा पाई है। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।
0: जी हाँ, बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल लाइन अप तय हो चुकी है, यानी कि अब 8 टीमें शेष रह गई हैं जिनके बीच से विजेता निकलेगा इस विश्व कप का। और अभी जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले होने हैं, वहां फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा 9-10 जुलाई की रात को, जबकि स्पेन की टीम बेल्जियम से भिड़ेगी 10-11

0: जुलाई की रात को।
1: तीसरा मुकाबला होगा सबसे चर्चित, जो कि 11-12 जुलाई को होगा, नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच में। वहीं चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच 12 जुलाई को कैंसास सिटी में खेला जाएगा, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड।

0: अब ये था राष्ट्रमंडल खेल भी होने हैं और ग्लासगो में होने वाले इन खेलों के लिए भारत की तैयारियां बहुत शानदार हैं और भारतीय खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ अपनी चुनौती पेश करेंगे और नया इतिहास रचने के लिए बेताब हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ ने इन खिलाड़ियों के सम्मान में एक विदाई समारोह किया और जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी शाहिद आजमी मौजूद थे, उन्होंने खास बातचीत की, कैसी तैयारी है, खिलाड़ियों से खास इंटरव्यू किए, तो पेश है ये खास रिपोर्ट शाहिद आजमी की।
1: नई उम्मीदें, नए सपने और ग्लासगो में इतिहास रचने का जुनून। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। नई दिल्ली में बीती रात भारतीय ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों को भव्य विदाई दी, जहां टीम इंडिया की आधिकारिक प्रतियोगिता किट का भी अनावरण किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होंगे। समारोह में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा, भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त लिंडी कैमरन, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह, खेल विभाग के सचिव हरिरंजन राव, शेफ डिमिशन रोहित राजपाल, साथ ही खिलाड़ी और कोच मौजूद रहे। लेकिन पूरे कार्यक्रम का सबसे आकर्षक पल वह था जब टीम इंडिया की नई आधिकारिक किट का अनावरण हुआ। देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा,
2: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत परचम स्पोर्ट्स सेक्टर में कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, समय के साथ स्थिति बदलती है और जो व्यक्ति, समाज या संस्था अपने स्वयं को बदलने की कोशिश करती है वो समय के साथ ताल मिला सकती है। स्पोर्ट्स का 75 इयर्स का हमारा इतिहास शायद मेडल टैली के हिसाब से बेस्ट माने ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये देश में यूथ में, क्योंकि 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, ये देश के यूथ में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जज्बे भी कोई कमी नहीं, ना कमी थी ना आज है ना भविष्य में रहेगी। ये ही युवा एथलीट आने वाले दिनों में, हमारी कहावत है ना, जब फसल को अच्छा खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो फसल अच्छी ही पकेगी, उत्पादन अच्छा ही आएगा। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे, जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं तब। दोस्तों, मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है, देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है। दोस्तों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले जनवरी 2025 से जून 2026 डेढ़ साल में 36 इंटरनेशनल इवेंट भारत में आयोजित हुई। अभी ये साल के 6 महीने बाकी है, 9 इंटरनेशनल इवेंट लाइन में है और 2027-2028 के लिए 19 इंटरनेशनल टूर्नामेंट भारत होस्ट करना तय हो चुका है और 9 और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हमारी भारतीय फेडरेशन ने बिल कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है जो भारत ने गोल तय करा है 2036 हमें 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में हमारा स्थान को अंकित करना है, 2047 जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें दुनिया के 1 से 5 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में उभरना है।
1: भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि भारतीय दल ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करेगा।
3: अभी तो अच्छा, आई होप दैट प्लेयर्स डिड पेड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
4: गेम्स कम है, होप्स ज्यादा, लेकिन
3: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, तो एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनी वे 2 months इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। वाई? बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल एसोसिएशन इज इन वन लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज विच प्लेयर्स वॉन्ट्स, सो एक्सपोजर इज द मस्ट, दे आर गेटिंग फॉर एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग, एंड एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन इट एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑल्सो, फॉर IOA इज ऑल्सो गिविंग फुल सपोर्ट टू प्लेयर्स, सो दैट आई होप दैट प्लेयर्स अच्छा करें।
1: अब बात सीधे उन खिलाड़ियों से जिनके कंधों पर देश की उम्मीदें हैं। सबसे पहले मिलते हैं देश की अग्रणी जूडो खिलाड़ी तुलिका मान से, जो इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर उतरेंगी।
5: उस चीज को मैं अगर प्रेशर पे लूंगी

0: तो मेरे लिए अलग है, बट बींग एन एथलीट, एलीट एथलीट, और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है. मैं उन चीज़ों को प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ. मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड.
1: अब सुनिए जूडो खिलाड़ी करणजीत मान क्या कहते हैं अपनी तैयारियों और लक्ष्य के बारे में.
2: कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो का पहले भी जो बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, इनके मेडल्स हैं, मेरी ये पहली कॉमनवेल्थ गेम्स है. मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, अपने जो मेरे ओपोनेंट्स उनको भी वॉच कर रहा हूँ, हर उनकी टेक्निक्स हर चीजें, और उस हिसाब से भी मेहनत कर रहा हूँ. इस बार ये हमारा जो जूडो टीम है वो पूरी जा रही है काफी टाइम बाद, क्योंकि 18 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो था नहीं, क्योंकि तब ऑल्टरनेट ईयर्स में होती थी. जब 22 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ हाफ वेट गए थे, जिसमें इनकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, ऑलमोस्ट सभी वेट्स में मेडल आए. इस बार हमारी टीम पूरी जा रही है, तो होपफुली ये हमारे लिए अच्छा भी और अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे सारी टीम.
1: इस बार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे भारत के मजबूत पदक वाले खेल शामिल नहीं है. ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीदें मुक्केबाजी टीम से है. भारतीय मुक्केबाज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ पदक जीतने का दावा कर रहे हैं. सबसे पहले सुनते हैं 70 किलोग्राम वर्ग के मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को.
3: जी, तैयारी तो काफी अच्छी है और उम्मीद यही है कि मैंने जितनी मेहनत करी उतना ही बेस्ट मैं वहाँ अपना दिखाऊं और गोल्ड मेडल लेकर वापस आऊं.
4: देखिए, कई खेल नहीं है वहाँ पे, ज्यादा जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर होती है कि मेडल टेबल पे ज्यादा जाए, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ ज्यादा मेहनत की है.

0: प्रीति बहन
1: जी,
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये रागनी, कलाकार थे खेमचंद वासाथी और किस्सा था वीर विक्रमादित्य से। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए बहुत सारी योजना चलाई हैं, जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। इसका जो उद्देश्य है प्रीति बहन, रासायनिक उर्वरकों विशेषकर यूरिया के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है और किसानों को प्राकृतिक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य हम भी और भी बता देते हैं कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कम करना है, जैविक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और अन्य वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देना है और मिट्टी की उर्वरकता और स्वास्थ्य में सुधार करना है, खेती की लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ये तो रही योजना, तो आप किसको सुनवा रहे हैं? आप
1: अब हम सुनवा रहे हैं बेगराज नागर की आवाज में ये रागिनी।

0: प्रीति बहन
1: जी,
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे मेघराज नागर की आवाज में ये रागनी और किस्सा था सेठ ताराचंद से, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। और सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्त पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम राम।
0: लोकेंद्र भाई,
1: प्रीति बहन,
0: कार्यक्रम शुरू हो चुका है और हम अपने किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देते हैं, साथ में मनोरंजन करवाते हैं।
1: और आज के हमारे जो कार्यक्रम में है कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत हम भाइयों को अनुभवी किसानों से बातचीत भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने भाइयों को बता दें कि बरसात का मौसम है, इस मौसम में हमें अपने पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी है, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है, हम ये भी बता देते हैं क्योंकि बरसात के मौसम में पशु का जो स्वास्थ्य है वो बहुत जल्दी बिगड़ता है। इस दौरान उन्हें नमी, कीचड़ और दूषित पानी के कारण विभिन्न तरह की बीमारियां हो जाती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है।
0: जी, और जैसे कि हमने बात की थी अपने कार्यक्रम ग्राम संसार में कि एक संतुलित आहार लेना है, वैसे ही हमारा जो पशु परिवार है उसके लिए भी खान पान का ध्यान रखना है, उन्हें ताज़ा पानी पिलाना है और जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर पानी की जो निकासी है, जैसे कि लगातार बारिश का मौसम चल रहा है, तो निकासी का ध्यान रखना है।
1: और इसके साथ साथ देखिए पशुओं को हमेशा ऐसी जगह साफ सूखे और हवादार स्थान पर बांधें इस मौसम में, और पशुशाला में जो वर्षा का पानी जमा ना होने दें, और तथा इसके साथ साथ नियमित रूप से साफ सफाई कीटाणु रोधक जो दवा होती है उसको छिड़काव करते रहें समय समय पर, और पशुओं को स्वच्छ और ताज़ा हरा चारा साफ पानी जरूर पिलाएं। और इसके साथ साथ सड़ा गला, फफूंद लगा या भीगा हुआ चारा ना खिलाएं क्योंकि इससे उनकी पाचन क्रिया में समस्या पैदा करती है।
0: जी बिल्कुल, और इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि कृषि का जो रीढ़ है, कृषि की जो रीढ़ है वो हमारा पशुधन है, तो जब हमारा पशुधन ठीक रहेगा तभी कृषि में हम उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ा सकते हैं।
1: हाँ, और देखिए एक बात और बता दूं अपने भाइयों के कि बरसात के मौसम पशुओं को नियमित टीकाकरण और जो उनकी बीमारी होती है उसका दवा जो हो पशु चिकित्सक होते हैं उनसे समय समय पर उनका उपचार दिखाते भी रहें जिससे उन्हें बीमारी ना हो, क्योंकि इस मौसम में बहुत सारी बीमारियों जैसे खुरपका मुंहपका इस तरह की बीमारी होती है, तो उससे उनके टीके भी लगते हैं तो वो जरूर लगवाएं।
0: जी, तो आइए जानकारी तो अभी कार्यक्रम में और भी होगी, आइए सुनवाते हैं सबसे पहले राजेंद्र जाटव की आवाज में ये उपदेश।

0: तो अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र जाटक की आवाज में ये उपदेश।
1: प्रीतिबेन, जैसा कि आपने कहा था कि हम अपने भाइयों को सुनवाएंगे कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत अनुभवी किसानों की बातचीत, तो आइए बातचीत सुनते हैं। और इनसे बातचीत कर रही हैं संध्या गुप्ता, इन्होंने हमारी जो अनुभवी किसान है उन्होंने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया।

0: सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन के एक नवीन अंक में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। आज के अंक में कुशलता और सूझबूझ के साथ खेती करने वाले प्रगतिशील किसान अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं।
2: मैं मनेंद्र सिंह, गांव खंडेरा, ब्लॉक तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। मैं सन 80 से खेती कार्य कर रहा हूं। पहले पारंपरिक खेती की, इसके बाद मैं वैज्ञानिक तरीके से मशीनरी से खेती की, और सन 2001 में डॉक्टर वीपी सिंह जो राइस ब्रीडर हैं, जो पद्मश्री प्राप्त किए हुए है, उनकी देख रेख में मैंने KRBL कंपनी का धान का बीज तैयार किया। तो उसके बाद में मैंने बहुत लोगों को धान के बारे में जैसे बीज उत्पादन किया, तो उसमें मुझे 2006 में जिला स्तर पे अधिक उत्पादन धान में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं इसी तरह खेती करते रहा। उसके बाद में गेहूं की भी 2012 में गेहूं में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोदीपुरम जो विश्वविद्यालय है उन्होंने प्रगतिशील कृषक का सम्मान प्रदान किया, और अनेकों बार जो KVK है उन्होंने बार बार कभी साग भाजी में कभी उसमें, क्योंकि मैं खेती लगातार कर रहा था उसके साथ साथ अपने लायक साग भाजी और लोगों को प्रभावित कर रहा था। तो इसी तरह करते करते मैंने 2011 में बागवानी के नींबू के पौधे IRI से सीडलेस के पौधे लिए 50, जिनको डेवलप किया, कलम बना के लोगों को वितरित किया और लोगों को जागरूक किया कि नींबू को जितना फायदा है। उसी में मुझे 2007 में इनोवेटिव कृषक का सम्मान प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने जो नींबू का उत्पादन किया उसमें अचार और उसका स्कोर तैयार करके उसकी जैसे मेडिसिन वैल्यू चाय वगैरह में इस्तेमाल किए हैं, नींबू में इस्तेमाल करें, तो इस तरह से उसका भी मैंने लोगों को प्रचार प्रसार किया और लोगों को पौधे तैयार उपलब्ध करा के दिए और अब भी दे रहे हैं। हाँ, फिलहाल जो हमने SRI से धान की बिजाई की है, जो नई प्रजाति है उसमें नई बीज जो रिलीज हुए हैं फिलहाल में पिछले साल ही 1985 और 1979, उसके भी 4 एकड़ के करीब सीधी बिजाई की है। इस तरह से मैं लोगों को नई नई तकनीक और उसके बारे में जानकारी देता हूँ, जिसका प्रदर्शन खेतों पर समय समय पर लगाता हूँ। अभी पीछे 3 साल की योजना थी ST में, जिससे मैंने IRI का 5-6 गांवों को बीज वितरण किया, जो उन्होंने सब्जी का और धान का और गेहूँ का 3 साल तक उनकी योजना चली। इस अनुसंधान IRI से जुड़ा हुआ हूँ। KVK ने, मेरठ विश्वविद्यालय ने, और एक हमारी संस्था है मोबिलाइजेशन सोसाइटी, उसमें आजीवन सदस्य हूँ। उसमें अनेकों बार प्रगतिशील किसान का सम्मान मिला है। इस तरह से मैं प्रगतिशील किसान तो नहीं हूँ और लोगों को जागरूक कर रहा हूँ नई तकनीक के बारे में, नए अनुसंधान के बारे में, जो नए बीज तैयार हो रहे हैं। अभी फिलहाल जो अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जी ने जो 108 वैरायटी रिलीज की थी, उसमें भी मैं वहां पहुंचा हुआ था, जिसमें केवल 30 ही व्यक्ति थे पूरे इंडिया से।
3: रंदानंद प्रधान, ग्राम तिगरी, तहसील हापुड़, जिला हापुड़। हम यहाँ फूलों की खेती करते हैं। करीब सन 82 से खुले खेतों में करते थे पहले, सन 2000 से पोली हाउस में खेती करते हैं और यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं। हम जो आम खेती करते हैं, जैसे गेहूं, गन्ना, धान, जो भी करते हैं, उसका कम से कम भी हमें 20 गुना मुनाफा इन फूलों की खेती में मिलता है। ये एक तरह से हाईटेक एग्रीकल्चर। पहले से ही मैं जो है पूसा में जाता था, नए नए बीज लेके आते थे वहां से, तो मुझे पता लगा कि कोई एक फूल ऐसा है जो की गांठ 2 रुपए की होती है और उसका फूल भी 2 रुपए का बिक जाता है, और इसमें जो है कम से कम इतनी बचत आ जाती है आगे की। कुछ जो अच्छे मार्केट है, जैसे ग्रेटर कैलाश है, डिफेंस कॉलोनी है, साउथ एक्स में जो है ना, ये सारा फूल का चंद लोग ही खरीदते थे उस टाइम, बढ़िया मुनाफा हो जाए, आगे बढ़ाते चले गए और आज तक बराबर खेती कर। जो पोली हाउस में खेती कर रहे हैं हम, पहले उसकी तैयारी करके उसकी कम से कम 1 से 1.5 फुट की बेड बनाते हैं पूरे पोली हाउस में, जैसे 1 एकड़ है तो उसमें बेड बना के और ड्रिप इरीगेशन के साथ लगाते हैं। के साथ उसमें जो हम गुलाब की खेती करते हैं, उसमें 30,000 पौधे आते हैं, देख रेख करते हैं, फिर उसे मार्केट, उसकी दिल्ली मार्केट है, इसमें गाजीपुर में एक्सपोर्ट भी हो जाता है बाहर देशों के लिए। गुलाब के अलावा जिप्सोफिला है, जरबेरा, कार्नेशन और कई खेती करते हैं। 1 मीटर की बेड हो गई या 80 सेंटीमीटर की बनाते हैं, उस पर

0: 40 का पाथ बना दें उसके चलने के लिए, तो उसमें जो है ना पेड़ ऊपर लगाते हैं बेड के ऊपर, उस पर ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, और खाद भी उसी ड्रिप से ही देते हैं, जो घुलनशील खाद आते हैं वो ही लगाते हैं। अब तो यहाँ 50-60 आदमी काम कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ फूल काट लिया, शाम तक वो तैयार हो जाता, शाम को गाड़ी आती है कैंटर या वो, उसमें जो है पानी में क्रेट होती है, क्रेटों में पानी हल्का सा भर के उसमें जो है खड़ा करके उसे मार्केट भेज देते हैं, वो ताजा रहता है, तो वहां तक मार्केट तक जाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे गांव से लगभग 1 घंटे में गाजीपुर गाड़ी पहुंच जाती है। यही है जी, इसमें जो बीमारी की रोकथाम करना, बाकी तो लगाने के लिए हर आदमी लगा सकता है, लेकिन उसे उगाना, उसके जो खाद पानी देना, उसको थोड़ा सा उसका मानक होता है कि इतना पानी लगेगा, इतना खाद लगेगा, इस तरह लगेगा, ये टाइम पे ये दवाई लगेगी, तो उस तरह कर। कई बार मुख्यमंत्री जी ने इसमें सम्मानित करा, एक जो जगह गोष्ठी होती है गोष्ठियों में सम्मान करा है, इस तरह सम्मान मिलते रहते हैं जी। तो ये है कि काम कर रहे हैं, आगे आने वाले अब जो बच्चे आ जाएंगे इस काम में, अपना और कारोबार बढ़ाएंगे, गरीब लोग हैं या जो वो काम करने है, तो कहीं जाना नहीं पड़ता, यहीं अपना काम कर लेते हैं जी। हम तो जो है जो भी आ जाएगा हमसे प्रेरणा लेगा, उसे सही दिशा में जो है प्रेरणा देंगे। ये तो मेहनत का सौदा है, इसमें तो जितनी जो मेहनत करेगा उतने ही पैसे, उसे अक्टूबर से लेकर और मार्च तक अप्रैल तक का मौसम होता है, ये सबसे बढ़िया होता है इस फूल के लिए, कोई सा भी फूल हो, जो पोली हाउस में फूल लगते हैं वो इस टाइम के सबसे अच्छे निकलते हैं, और मार्केट भी इसी टाइम की होती है। हमारे यहाँ जैसे हॉर्टिकल्चर है, इसके जो है गोष्ठी होती है, किसी मंत्री की गोष्ठी है, किसी डीएम की गोष्ठी है, या किसी की है, तो उसमें हमारे फूल जाते हैं। अब पैकिंग तो इसकी ये है कि जो हमारा एक पैकिंग होती है, जैसे हर चीज की जरबेरा की तो एक पन्नी आती है, वो इसको फूल पे लगानी पड़ती है, और गुलाब का एक जैसे 20 बंच का हम बनाते हैं, तो उसके ऊपर जो है ना गुलाब के ऊपर एक रैपर लगा, उसमें उससे पैक करते हैं, उसकी अलग अलग पैकिंग है। जैसे जिप्सोफिला है, उसको एक पन्नी आती है मार्केट से ही, उसको पन्नी में बंच को पैक करते हैं।
1: जी नमस्कार, मैं एक प्रगतिशील महिला किसान हूँ। मेरा नाम कुसुम मौर्या, ग्राम रायपुर वजीरगंज गोंडा से। ये मैं मुख्य रूप से एलोवेरा है, सहजन है और शतावरी अश्वगंधा, ये खेती कर रही हूँ। और ये 4 एकड़ में मेरा प्लांट है पूरा। औषधीय खेती मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग औषधीय खेती कर रहे हैं, तो मेरा भी विचार आया कि मैं भी औषधीय खेती करूँ, और इसमें थोड़े लागत और ज्यादा मुनाफा भी दिख रहा है, इसलिए मैंने औषधीय खेती पर अपना रुझान, इसमें अपना रुचि लाई। 2025 में मुझे ये प्रगतिशील किसान का सर्टिफिकेट मिला है, और ये औषधीय खेती करने के कारण। जलवायु तो अपने यहाँ का ठंडी और गर्मी, ये बरसात, ये तीनों मौसम है, और इसमें अच्छा ये फसल चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे एलोवेरा है तो उसे लगाया गया जुलाई महीने में, लगाते हैं तो अच्छा डेवलप होता है, साल भर कम से कम लग जाता है तैयार होने में, और फिर इसकी कटाई जो है 3-4 महीने में किया जाता है। एक बार कटाई किए तो फिर उसके 2 महीने बाद फिर कटाई करेंगे, उसमें पत्ता आता रहता है, कटाई करते रहते हैं और पत्ता मतलब उसमें नया निकलता रहता है, बार बार इसे लगाना नहीं पड़ता है। ये तो इसमें लागत कम आती है और मुनाफा ज्यादा होता है। सहजन भी इसी तरह है, सहजन लगाए, 1 साल लगा दिए तो 4-5 साल बड़े आराम से चल जाता है, और उसके पत्ते की कटाई करते रहते हैं, छटाई करवा देते हैं, पत्ता उसका निकाल लिए मतलब ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, फिर उसमें नए कल्ले आ जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एलोवेरा से, एलोवेरा जेल है, साबुन है, जूस है, एलोवेरा तेल है, ये सारे इस प्रोडक्ट में बनाती हूँ, और सहजन से पाउडर है और सहजन का तेल है, दर्द निवारक तेल, सहजन का साबुन भी बनाते हैं। 11 महिलाएं हमारे से जुड़ी हुई हैं जो इसमें अपना सहयोग करती रहती हैं, जो भी काम होता है सब पूरा मिलके करती हैं। ये प्राकृतिक खेती है, किसी भी प्रकार का मतलब केमिकल वगैरह या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते, हाँ नेचुरल तरीके से प्राकृतिक खेती, जैसे गो आधारित गोबर की खाद है या केचुआ की खाद, ये सब प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद प्रयोग नहीं करते। ये मार्केट अपना यहाँ गोंडा में है, अयोध्या है, फैजाबाद है, और नजदीकी ऐसा फिर जो हम मतलब अपने कॉन्टेक्ट नंबर है उनको, जैसे दिल्ली हुआ, बनारस है, या हरिद्वार है, कई जगह मतलब मैंने सामान ये कॉन्टेक्ट द्वारा भेजी हूँ, डाक द्वारा या कुरियर से मैं भिजवा देती हूँ, जो भी अपना संपर्क करता है और उसको सामान चाहिए होता है तो उसको मैं भिजवा देती हूँ। मैं किसानों को यही

0: संदेश देना चाहेंगी कि कोई भी काम करें मन लगा कर करें, और इच्छा से जब करेंगे तो अच्छा ही होगा। कोई भी खेती करते हैं तो उसमें अपना बढ़िया से रुचि लगाएं, जैसे औषधि खेती है या खेती किसान मतलब ये सब्जी वाला है या गन्ना की फसल, कुछ भी करें लेकिन मन लगा कर करें तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अगर कोई भी लेना चाहे। मैं अचार भी बनाने का काम करती हूँ, और ये ना साबुन है जेल है, ये भी कोई बनाना चाहे और सीखना चाहे तो मैं उसका प्रशिक्षण भी देती हूँ। अब मेरा खेती जो अच्छा है उस पसंद आता है और मुझसे पूछता है कि ये कैसे किया जाता, मैं उसको भी बताती रहती हूँ और वो सीखता रहता। बहुत सारे लोग मतलब देखने भी आते हैं जिसको मैं जिसको अच्छा लगता है कि ये कैसे किया जाता है या कैसे होता है, मैं उसको उसके बारे में बताती रहती हूँ। भविष्य की योजना है कि मैं जो हमारे सारे ये प्रोडक्ट हैं कुछ पाउडर फॉर्म में है बन रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसे टेबलेट फॉर्म में बनाया जाए तो ज्यादा आसान होगा खाने में। धन्यवाद।
1: मेरा नाम मुकेश नागर, ग्राम पोस्ट बम्बावड़, जिला गौतम बुद्ध नगर। मैं एक प्रगतिशील किसान हूं। बासमती 11-21 पे ज्यादा हमने काम किया है, और वो भी पेस्ट मैनेजमेंट पे। NCIPM से जुड़े हुए हैं हम। 15-16 साल होगी जिसमें कि हमने अभी तक बिना पेस्टिसाइड के जो ज्यादातर बासमती पे काम किया। किसानों को भी हम अपने खेत पे प्रतिदिन दिखाते हैं और कम पेस्टिसाइड लगाने के लिए ज्यादा करते हैं, जो जिसमें हम कुछ जैविक भी करते हैं अपना जो बनाकर लगाते हैं। हमने DSR से भी हम 2 साल से जुड़े हुए हैं। DSR विधि से भी हमने लगाया। अब के मैंने 5 एकड़ में DSR लगाई है, 1985 और 1989। ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, कम खर्चे में और अधिक मुनाफा इसमें, जो लेबर भी कम लगेगी लग रही है इसमें जो, और बहुत ही फायदेमंद है ये जो DSR विधि धान की। जो धान से हमने गेहूं की भी करी है, और गेहूं के बाद में हरी खाद लगाते हैं ढेचा और मूंग, जो उससे हमें जो है कम यूरिया की लागत में हमको धान की फसल मिल जाती है। उससे हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है मूंग से, जो मूंग और ढेचा से। लेबर की बड़ी समस्या हुई, फिर हमने DSR विधि लाई। इसमें धान की कम से भी कम 70% बचत है पानी की DSR विधि में। DSR विधि ये होती है जी, हमने गेहूं काटने के बाद में हमने इसमें जो 20 मई बिजाई चालू करी है, गेहूं का खेत का पड़ेवा करा और उसमें सीधी धान की बिजाई कर दी। 15 से 20 दिन बाद उसमें पानी लगा दिया। अगर जर्मिनेशन में कुछ कमी आ रही है तो 10 से 12वें दिन पानी लगा दो तो पूरा जर्मिनेशन आ जाता है। इसमें किसान को बहुत ही फायदा है। लेबर मिलती नहीं है, लेबर 1,000 रुपए, 5,000-6,000 रुपए एकड़ का ले रही है, और इससे काम हो जाता 2,000 रुपए में किसान का जो एकड़ का। NCIPM का जो प्रोग्राम चलाया था अपना वेस्ट मैनेजमेंट पे, इस पे जो हमें पूछा से भी अवार्ड मिला हमें। NCIPM ने पिछले साल भी हमको अवार्ड दिया। इसी पे जो हमने कम पैसे साइड पे किसानों को जागरूक किया, और वो हमने कम से कम अपने 25-30 गांवों में हमने ये प्रोग्राम चलवाया, और इससे किसानों को बहुत ही फायदा हुआ। जानकारी किसान को यही पता नहीं था रोग और कीट क्या है, दुकानदार पर निर्भर रहता था। उसके लिए हमने बहुत अपील की, प्रोग्राम में मेहनत करी, डॉक्टर बुलाते थे हम बहुत ज्यादा, जो हर महीने मीटिंग कराते थे और किसानों को जाकर जागरूक करे थे, और इसी पे हमको कई बार अवार्ड मिल चुके हैं। जो ज्यादातर हम किसानों को जो है यही जागरूक करते हैं कि भाई कम से कम जहर मुक्त खेती करें। और हमारे इधर जो है कोई भी दुकानदार है वो बिगैर हमारे पूछे दवा नहीं दे सकता। कोई किसान बम्बावड़ से इन गाँव से जाता है तो पहले हमसे मालूम करता जी ये दवा कवाएं दें या नहीं दें। जब हम कहेंगे उनके खेत को देख के, जब उनको जागरूक करके जब लिख के देंगे भाई दवा लगानी, इसके ऊपर हमको बहुत सफलता हासिल हुई है। अनुभव तो ये होता है कि एक तो पहचान होती है कि आते भाई ये ऐसी खेती कर रहे हैं। अब बाहर सू भी KVK सू भी बहुत ज्यादा हमें, मेरठ सू भी बात पे जो भाई वो बम्बाड़ में, फिर हमारा जो चावल है वो 4-5 देशों में गया है, वहां वो जहर मुक्त गया था, इसलिए तो उसमें एक अनुभव सा होता है भाई हमने कुछ करा है। और भी आदमी कहा भाई, 2 आदमी आपस में पूछे हैं भाई ये कर रहे हैं, इनको जानकारी है, तो उसको एक अनुभव होता अलग खुशी होती है।
2: कृषि समाचार दर्शन का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि समाचार दर्शन, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के गाए कुछ गजलें, प्रोग्राम गजल के अंतर्गत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो

0: हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और दिल्ली के भारत मंडपम में प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 14 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा कि अगले 4 वर्षों में दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या मौजूदा लगभग 9,000 से बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को वास्तविक अर्थों में ईवी सिटी बनाने के लिए आधुनिक और फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उन्होंने सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने, पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सभी स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में बदलने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, डीडीए बाजारों, रेलवे स्टेशनों, सरकारी परिसरों, मॉल और प्रमुख क्षेत्रों के आसपास स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मेट्रो, डीडीए और वाहन निर्माताओं के साथ समन्वय बढ़ाकर ईवी चार्जिंग अवसंरचना का तेजी से विस्तार करने पर भी बल दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगी। यह समारोह सराय रोहिल्ला मेट्रो स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। 12 किलोमीटर से अधिक लंबा 10 स्टेशनों वाला यह कॉरिडोर पश्चिम, मध्य और पुरानी दिल्ली को जोड़ेगा। परियोजना के पूरा होने के बाद सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और गाजीपुर, ओखला तथा भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायो माइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। महापौर ने बताया कि ओखला अपशिष्ट निपटान क्षेत्र पर अब तक लगभग 80 लाख मीट्रिक टन लेगसी वेस्ट का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है, जबकि लगभग 15 लाख मीट्रिक टन फ्रेश वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के कार्य का तीव्र गति से जारी है। उन्होंने जानकारी दी कि ओखला और भलसवा अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों को इस वर्ष दिसंबर तक तथा गाजीपुर अपशिष्ट निपटान क्षेत्र को अगले वर्ष दिसंबर तक समाप्त करने का लक्ष्य है। श्री वाही ने कहा कि वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिल्ली को स्वच्छ, हरित और अपशिष्ट मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम तेजी से कार्य कर रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों के पंजीकरण में स्टैंप ड्यूटी की चोरी रोकने और संपत्ति से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए के पंजीकरण संबंधी नियमों को और सख्त बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सब रजिस्ट्रारों को जीपीए दस्तावेजों की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: मुख्यमंत्री ने बताया कि माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और बच्चों जैसे रक्त संबंधों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित जीपीए को पंजीकरण से पहले अनिवार्य रूप से कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पास जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर 30 दिनों के भीतर कारण सहित तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करेगा। जांच में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कहीं दस्तावेज में किसी प्रकार के पैसे के लेन देन जमीन संपत्ति का कब्जा सौंप

0: या मालिकाना हक का अवैध हस्तांतरण रोकना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा और प्रमुख वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 14 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन द्वारा आयोजित इस आयोजन को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। यह आयोजन वस्त्र फैशन निरंतरता तकनीक नवाचार निवेश और विश्व बाजार में भारत के संपूर्ण वस्त्र उद्योग की व्यापकता और विविधता को एकीकृत वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा। 17 जुलाई तक चलने वाले इस आयोजन में 140 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है। भारत टेक्स के तीसरे सत्र में वैश्विक कपड़ा उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है।
2: हथकरघा हैकेथॉन का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, स्टार्टअप, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण करने के साथ अपने विचार www.youthideathon.in/handloom पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान ज्यूरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसका आयोजन IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन ट्रांसफर में होगा। इस पहल के बारे में वस्त्र मंत्रालय में हथकरघा मामलों के विकास आयुक्त डॉक्टर एम बीना ने बताया कि हथकरघा हैकेथॉन का उद्देश्य देश की युवा रचनात्मकता को हथकरघा क्षेत्र की समृद्ध विरासत के साथ जोड़ना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के सदस्यों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि दिल्ली सदियों से देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र रही है और आज वैश्विक कूटनीतिक तथा प्रौद्योगिकी संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज IT विभाग की समीक्षा बैठक में डिजिटल क्षमता निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को IT प्रशिक्षण लैब और प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विकास भवन 2 का AI आधारित IT प्रशिक्षण प्रयोगशाला उद्घाटन के लिए तैयार है और जल्द ही सरकारी अधिकारियों को डिजिटल प्रशासन तथा AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से स्टार्टअप, नवाचार और बेहतर जनसेवा को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ओम प्रकाश व्यास ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान बच्चों के अधिकार की सुरक्षा और बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और भरोसेमंद वातावरण विकसित करना दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेस्ट वाइज सिटीजन्स नामक नागरिक जागरूकता पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर NDMC अध्यक्ष केशव चंद्रा ने पुनर्चक्रण योग्य कचरे के घर घर संग्रह के लिए रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, RRR ऑन व्हील्स वाहनों को झंडी दिखाई। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने क्राफ्ट सस्टेन्स ट्रेडिशनल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक का लोकार्पण किया। यह पुस्तक भारत की शिल्प परंपराओं, पारंपरिक ज्ञान और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। पुस्तक में 19 शोध लेखों के माध्यम से भारतीय शिल्प परंपराओं के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और समकालीन विकास पर प्रकाश डाला गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित पारगमन उन्मुख विकास

0: टीओपी नीति के अंतर्गत भूमि विकास के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह आवेदन डीडीए के ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम के माध्यम से किए जा सकेंगे। इस नीति के तहत मेट्रो क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के आसपास 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसमें पहली बार करीब 80 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र जोड़ा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना शाम 4:19 पर मिली थी। विभाग ने बताया कि इस दुर्घटना में घायल दो लोगों को स्थानीय निवासियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना में 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य मौके पर लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को रोहिणी के बुद्ध विहार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 100 ग्राम उच्च स्तर की मादक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी अन्य 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं ऐसे ही एक अन्य मामले में एक महिला आरोपी को 20 ग्राम से अधिक उच्च स्तर के मादक पदार्थ के साथ दिलशाद गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में आगे की जाँच जारी है। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयन मंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
1: आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनित भाग है, जो संचार और उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में होने वाले दैनिक बदलाव, जीपीएस और भारत की नाविक प्रणालियों जैसे संकेतों को प्रभावित करते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस तकनीक से ऊपरी आयन मंडल की संरचना और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा भारतीय क्षेत्र के लिए अधिक सटीक आकलन उपलब्ध होगा। ये तकनीक विशेष रूप से भूचुंबकीय भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आयन मंडल की गतिविधियां अत्यधिक जटिल होती है। अक्षित वैद्यांत की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अमीशा।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। राजधानी दिल्ली में आज हल्की वर्षा के साथ साथ बादल छाए रहे। आज का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर के समय कई जगहों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में कहा, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 32,000 की जाएगी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था और अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों पर चल रहे बायोमाइनिंग कार्यों की प्रगति रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में अचल संपत्तियों से जुड़े फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के पंजीकरण संबंधी नियमों को सख्त बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक इमारत ढही, राहत और बचाव कार्य जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत

है कार्यक्रम गीत मालिका। फिल्म संगीत के इस खूबसूरत कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां, और ये हसीन शाम और कुछ गुनगुनाते हुए ये गीत जिसका आप आनंद लेंगे। और कहते हैं ना कि जिंदगी में जब भी आप सिर्फ आगे के लिए सोचते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो छोर है वो उन यादों की तरफ ज़रूर रहता है जो पीछे गुजर गया, और वो छोर जो है वो ही हमारी ज़िंदगी को आगे लेकर जाने का एक कामयाब रास्ता भी हमें दिखाता है। और इस खूबसूरत शाम में जब आप उन लोगों को याद करते हैं जो मंजिल में आप तक पहुँच आपका साथ देते हैं और उस मंजिल तक पहुँचने में आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, और यूं ही कहीं इसी हसीन शामों में उनकी ही यादों का कारवां निकल पड़ता है, तो उसी कारवों को याद करते हैं, उन्हीं यादों के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में फिल्म आशिकी से। दोस्तों कहते हैं कि प्यार का जो एहसास होता है वो कुछ इस तरह होता है कि शब्दों से आप बयां कर सकें ना कर सकें, लेकिन कुछ ऐसे संगीत होते हैं जिनसे बयां करना आसान हो जाता है और कुछ ऐसी ही बातें दिल की बयां करता है ये अगला गीत।

एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, सिर्फ खामोशी में महसूस किया जा सकता है। रात की तन्हाई हो, चांदनी रात हो, और उस धीमी रोशनी में अपनों की याद हो, तो बस दिल यही चाहता है कि वो साथ बैठें, पास बैठें, और ऐसे में उस शख्स की याद छुपके से आकर बैठ जाती है आपके पास।

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल की धड़कन कुछ अलग कहानी कहने लगती है। वजह समझ में ही नहीं आता, लेकिन मुस्कुराहट अपने होठों पर जरूर रहती है और लगता है कि किसी की एक झलक ने पूरे दिल की रंगत ही बदल डाली। कुछ अनकहे एहसासों और मासूम सी बेचैनी को बयां करता है ये अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

तो कार्यक्रम गीत मालिका का ये सफ़र एक कहते हैं कि इस पड़ाव पर पहुंच गया है कि जहां से आप इस कार्यक्रम से विदा भी लेंगे, और साथ ही जाते जाते सुनते जाइए ये खूबसूरत गीत। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं होती, ये हमारी किस्मत हमसे मिलवाती है। एक चेहरा, एक मुस्कान, प्यारी बातें और साथ, सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि दिल की धड़कन फिर से धड़कने लगती है और फिर शुरू होती है कस्में, वादे, प्यार निभाने की वो साथ, वक्त बिताने की सारी बातें। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: तो इसी खूबसूरत गीत के साथ मुझे यानी तरन्नुम जहां को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी ही देर में आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा

0: को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए।

0: को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
1: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त

0: होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
1: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्स्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से, और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بسم الله

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, साथ ही वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और संघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद को भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि ऋण और उर्वरक सब्सिडी जैसी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आत्मनिर्भर बनाने का

आप सुन रहे थे मुकेश और गीता रॉय की आवाज़ में ये गीत फिल्म बावरी नैन से। आइए सुनते हैं मुकेश की ही आवाज़ फिल्म बेकरारी से।

उनकी नजर को देखते हैं, जो बेखबर है उसी बेखबर को देखते हैं। दुआएं मांग रहे हाय हाय, दुआएं मांग रहे हैं असर को।

0: लाखों में तू बढ़ता चल,
1: बढ़ता चल,
0: तू बढ़ता चल,
1: बढ़ता चल,
0: रुकना नहीं तुझे, रुकना नहीं, घबरा न कहीं, तेरी है जमी, तू बढ़ता चल,
1: बढ़ता चल,
0: तुझे रुकना नहीं, तुझे रुकना नहीं।

अभी आप सुन रहे थे बूट पॉलिश से ये गीत, आवाज़ आशा भोसले और मन्ना डे की। आइए सुनते हैं अगला गीत इस कार्यक्रम के अंतर्गत शमशाद बेगम की आवाज़ में, फिल्म नगमे से।

आप सुन रहे हैं पुरानी हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत सुनहरे। आइए सुनते हैं अगला गीत मुबारक बेगम और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म श्री 420 से ये गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म चंद्रकांता से।

पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम गीत सुनहरे आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: कुमार जी, महाराज दिलजीत सिंह घोड़े पर सवार अकेले पश्चिम की तरफ जा रहे हैं।
1: शुभ अवसर जी, राजा बापू महाशंकर के मंदिर जाया करते हैं, ये हमारा पुराना रिवाज।
2: अच्छा।

0: हे महाशंकर, आज तेरा ये भक्त अपनी भक्ति के फूल आखिरी बार तेरे चरणों में चढ़ाने आया है। लड़ाई जीतने में मुझे इतनी खुशी न मिलती जितनी हार मानने में मिली। हे महाशंकर, तेरी दया से तेरा ये भक्त सपनापुर जीत सकता था, कुमार का सिर काट कर तेरे चरणों में चढ़ा सकता था।
1: और इसी गीत के साथ इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आइए अब सुने हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों की उनकी उपज को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइट

0: नॉन स्टॉप फिल्मी गीतों पर आधारित ये प्रोग्राम यहीं संपन्न करते हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने हेतु शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा स्थानीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ना है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। पाकिस्तान के कराची तट से 12 घंटे पहले लापता हुए बोइंग कार्गो विमान का मलबा गहरे समुद्र में पाकिस्तानी बचाव दल को मिल गया है। विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों की तलाश जारी है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने बताया कि K2 एयरवेज के कार्गो बोइंग 737 विमान का मलबा ओरमारा बंदरगाह से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा के अनुसार विमान कराची के दक्षिण पश्चिम में समुद्र में कई बार ऊंचाई में अचानक बदलाव के बाद तेजी से नीचे उतरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अलशारा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्होंने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की अमरीकी सूची से हटाने का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा कि इससे सीरिया की पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा और अमरीकी कंपनियां वहां निवेश के लिए तैयार है। इस फैसले

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में गजल, ये अलग बात है।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

गीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं सीरगाजी एस गोविंद राजन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो आदि ताल में निबद्ध है। आपके साथ वलन प्रसंगत किया है थिरु पर कादल एस वीरा राग रवन ने। संगीत दिया है श्री रंगम ने, श्री रंगम रंगा स्वामी पिल्लई ने। तो लीजिए सुनिए सिरगाजी एस गोविंद राजन का गाया रागम कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन। कलाकार थे सिर गाजी एस गोविंद राजन। आपने प्रस्तुत किया रागम कल्याणी जो आदिताल में निबद्ध था। आपके साथ वलन प्रसंगत किया थिरु पर कादल एस वीर राघवन ने। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग, कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। पांच बजकर 20 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। 5:30 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित मधु मुदगल से गायन। हम प्रस्तुत करेंगे राग भटियार। सुबह 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। आज आप सुनेंगे भगवान महावीर के दर्शन पर विचार। 6:45 पर सुनिएगा रामचरित मानस से पाठ। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 111। 6:55 पर संस्कृत में समाचार होंगे और उसके बाद सुनेगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शाहरुख हसन के गाए भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का समय रहेगा। 8:45 पर सुनिएगा सितार वादन। कलाकार होंगे मेहतल अली खान। आप प्रस्तुत करेंगे राग अलहिया बिलावल। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डाटा एनालिटिक्स से उद्योग और शिक्षा का बढ़ता समन्वय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रेरणा गौड़, कैंपस निदेशक नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्थापक निदेशक एवं सदस्य सचिव अटल इनक्यूबेशन सेंटर NSUT।

0: अरे नौब जी सुनिएगा, पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक ये प्रस्तुत करेंगी हरजीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर स्वरांजलि कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे नौटंकी में किस्सा राजा हरिश्चंद रानी तारामती। संचालन करेंगे कमल किशोर बढ़ाई। साथियों में आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। इस दौरान प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में मेलबर्न में आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक

प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन उड़ीसा दीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुदरा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंधिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश, संपर्क, रसद और औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को उजागर करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के कोटा में श्री गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली से मुंबई के नरीमन प्वाइंट और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक की यात्रा केवल 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राज्य में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा की खरीद की जाएगी, जिसमें 87,000 मीट्रिक टन मिलिंग खोपरा और 226 मीट्रिक टन बाल खोपरा शामिल है। खोपरा की पूरी खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रूपये से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से युद्ध विराम समाप्त हो गया है और अमरीका जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई करेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne, Australia on the second leg of his 3-nation visit. He was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill, upon his arrival yesterday. The Prime Minister said this visit will add vigour to the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he looked forward to the talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. The Prime Minister said that he will also have the opportunity to interact with the Indian diaspora.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीथ आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।